0: Ferhat Naz. हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल अबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:45 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: हमारे जीवन में कुछ व्यवहार की बातें हैं, अगर उस व्यवहार को कुशलतापूर्वक निभाएं, उस व्यवहार से हमारे धर्म में अनुकूलता आएगी और हमारे धर्म में एकरूपता भी आ सकती है। जैसे हमारे जीवन में चार पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे धर्म की परंपरा है कि हमारा जीवन धर्म से प्रारंभ होता है और अंत में जाकर के मोक्ष में समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म से जीवन प्रारंभ करता है, मोक्ष में जाकर के जीवन समाप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति अर्थ से जीवन प्रारंभ करता है तो काम में जाकर अपने जीवन को समाप्त करेगा। इसलिए सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य होता है कि धर्म से जीवन प्रारंभ करें। कई शाखाएं हैं धर्म की भी, तो धर्म की सबसे पहली शाखा है सेवा। अगर आप धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्म को सेवा के रूप में कर रहे हैं तो वही धर्म ही आपका सेवा के रूप में बदल जाएगा। तुम सेवा से पाओगे पार। कई संतों ने दूसरे शब्दों में कहा कि सबसे पहली तो सेवा है। कोई व्यक्ति सामने असहाय है, गरीब है, जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, चलने के लिए जिसकी टांगें सही सलामत नहीं हैं, देखने के लिए नज़र सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सेवा की जाए। दूसरी बात है, उस सेवा के साथ धर्म को सुमिरन के साथ भी जोड़ा जाए। आप धर्म कार्य तो कर रहे हैं लेकिन सुमिरन आपका नहीं हो रहा है, तो उस धर्म के साथ सुमिरन को भी जोड़ा जाए, परमात्मा का नाम का जाप भी चलता रहे। और तीसरी बात है सत्संग। सत्संग का मतलब ज्ञानी जनों का संग करना। जब ज्ञानी जनों का संगत हम करेंगे तो मन के विकार अपने आप निकलने लगेंगे, भागने लगेंगे, मन हमारा निर्मल होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा। तो सबसे पहली बात है कि सेवा के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें। आपके पास जो भी है उसको अच्छे कार्यों में लगाएं, सेवा में लगाएं, सेवा के द्वारा मन को मोड़ने का प्रयास करें। दूसरी बात, सुमिरन के द्वारा अपने आप को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, निरंतर सुमिरन का प्रवाह चलता रहे। तीसरी बात है सत्संग, संतों का संगत करें, भजन के द्वारा, आंतरिक भजन के द्वारा मन को निर्मल बनाएं, तो सबसे बड़ी बात यही होगी। और इसी बात को हमारे सद्गुरु ने भी कहा, तुम सेवा से पाओगे पार। बिना सेवा के जगत से उद्धार होना हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता, इसलिए सेवा सबसे प्रमुख मानी गई है जगत में। हमारे जीवन में कुछ व्यवहार की बातें हैं, अगर उस व्यवहार को कुशलतापूर्वक निभाएं, उस व्यवहार से हमारे धर्म में अनुकूलता आएगी और हमारे धर्म में एकरूपता भी आ सकती है। जैसे हमारे जीवन में चार पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे धर्म की परंपरा है कि हमारा जीवन धर्म से प्रारंभ होता है और अंत में जाकर के मोक्ष में समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म से जीवन प्रारंभ करता है, मोक्ष में जाकर के जीवन समाप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति अर्थ से जीवन प्रारंभ करता है तो काम में जाकर अपने जीवन को समाप्त करेगा। इसलिए सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य होता है कि धर्म से जीवन प्रारंभ करें। कई शाखाएं हैं धर्म की भी, तो धर्म की सबसे पहली शाखा है सेवा। अगर आप धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्म को सेवा के रूप में कर रहे हैं तो वही धर्म ही आपका सेवा के रूप में बदल जाएगा। तुम सेवा से पाओगे पार। कई संतों ने दूसरे शब्दों में कहा कि सबसे पहली तो सेवा है। कोई व्यक्ति सामने असहाय है, गरीब है, जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, चलने के लिए जिसकी टांगें सही सलामत नहीं हैं, देखने के लिए नज़र सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सेवा की जाए।
0: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती है नमस्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे पोषक तत्वों का महत्व। मानस गान भाग संख्या 330 आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। सुप्रभात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे समय की महिमा, सत्य ही शिव है, सत्य भाष्य बने। और साथ ही एक हम वार्ता सुनेंगे सुखी

जीवन का मूल मंत्र तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार होंगे डॉक्टर शिव कटारिया। आठ बजकर 45 मिनट पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम मरुमंगल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:10 पर। कलाकार होंगे ओम प्रकाश भाट। फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे आज के फनकार। फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरोध गीत फरमाइशी गीतों पर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 11 बजे। कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 12:05 पर। 12:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम खेत खलियान। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी आप लेंगे गाजर की उन्नत खेती। दोपहर 1:05 पर सुनेंगे महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे विश्व आदिवासी दिवस, राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बारिश के मौसम में बिजली से सावधानी और मौसमी फलों से बनने वाले हेल्दी डेजर्ट। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। शाम 5 बजे सुनेंगे युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद और साथ ही जान पाएंगे आज का इतिहास। सराकी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बुजुर्गों का सम्मान, गाय भैंसों में थनेला रोग से बचाव, केंचुआ खाद की उपयोगिता, कीटनाशकों के दुष्परिणाम। साथ ही आप जानेंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत इस कार्यक्रम में आप सुना करते हैं। ये सुनेंगे रात्रि 8 बजे। तो ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम और उनके समय के बारे में जानकारी।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यत्नम् अद्यारभ्य अस्मिन् मासे सप्तदशदिनाङ्कपर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं, राष्ट्रैक्यं, भारतस्य सांस्कृतिकपरम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे आजादी का अमृतमहोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थजनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिकराष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु, समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं, राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरं नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरं नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और

0: भी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pehelgam and Baltal routes from today. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. No fresh Yatra convoy was allowed to leave the Bhagwati Nagar base camp in Jammu yesterday as precautionary measure amid rains and inclement weather conditions prevailing in Ramban district and parts of Kashmir. The United States has rejected China's move to establish what it called a national nature reserve at Scarborough Reef, saying the measure could restrict Filipino fishermen's access to their traditional fishing grounds, as reflected in the 2016 arbitral award. In a press release, U.S. State Department said this is yet another unilateral attempt by China to use dubious environmental and legal pretexts, backed by coercion, to advance its sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea at the expense of its neighbors. The United States stands with its ally, the Philippines, in support.

0: support of a free and open Indo-Pacific, the statement further said. The United States is considering ending a provision that gives certain foreign workers up to 60 days to find a new job after losing their employment. The proposal is currently under review by the White House Office of Management and Budget and has not yet become a rule, with the details of the proposed changes not publicly available in full. A move like this could require affected H-1B skilled workers and their dependents to leave the country almost immediately. If the regulation is finalized, it would remove the existing 60-day grace period for certain workers and their dependents when the employment on which their immigration status is based ends before their authorized period of stay expires. The change could have particular significance for the Indian expat community in the US. Indian nationals have long been the biggest beneficiaries of the H-1B skilled worker program. In the 2024 fiscal year, 71% of approved H-1B petitions were for beneficiaries born in India, according to US Citizenship and Immigration Services. More than 5.2 million people of Indian origin live in the US, according to recent estimates based on the US Census data. India's Sagnik Roy and Sayantan Koshari clinched the gold medal in the under-31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in Hefei, China. In the first elimination round, 34 pairs competed and the top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of northeast India. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands for today. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने खेती हरा वास्ते। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी ले रहे हैं पोषक तत्वों का महत्व।
2: किसान भाइयों, मिनखा और पशु अमेजिया भोजन की आवश्यकता पड़े बियाई पौधा ने भी विकास करन वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आपां बात करा फसलां ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध करावा। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप छू भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग छूमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बा सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करे। जीवन चक्र पूरा करन वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करा तो बिंगमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन हुआ और पौधों तेजी हूँ बढ़वार करे इंगमा भी नाइट्रोजन को संयोग हुए। बुंटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनान वास्ते भी मदद करे। अब आपा किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधा को जिको पत्तियाँ हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियाँ छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को निकरे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी होवे, बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव होवे। दूसरे पोषक तत्व की बात करा जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे। बुंटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चल है जिया फसल है बिंगी पत्तियां जी की है वह छोटी रह जाएगी और पत्तियां के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे बी आपने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करन वास्ते आपने फास्फोरस युक्त खाद जिया डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जांच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस

0: काम कौन देवे। इन वास्ते जिके समय अपा फसल की बिजाई करा भी समय फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा अपा पोटाश की। पोटाश जिकी है बा पत्तियां गे माँ जी को भोजन बने बिना पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसलों में रोग ना लगे जिया पालो सूखो खराब ना करे बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिंगी गुणवत्ता ने कायम रखे। पोटैश की कमी को पतो आपने चल है पतो कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हो है। तनों कमजोर हो जाए और जिये ही तेज हवा चले तो पौधों नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटाश की कमी पूर्ति करने वास्ते आपने पोटाश युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटाश को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आप फसल में देने की आवश्यकता हो। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट, लो है, फेरस सल्फेट, मैगनीज है, मैगनीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटाश बुआई के टाइम पर ही देना आप और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में दो या तीन बार अपने छिड़काव करना हो सी। किसान भाइयों आप पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आप सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा। बीहू आपा ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इनमें कमी है। तो अबे मैं चालू, राम राम सा।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
2: श्रोता अंतराल से पहले आपने जानकारी ली पोषक तत्वों का महत्व। आइए अब सुने एक भक्ति गीत। मन सपना में

अरणा कुशना वहुदेला यू कंस हरी से खेला जी, हिरणा कुशना वहुदेला कंस हरी से खेला, भगड़ावत हो गया गेला रे जारी बिगड़ी श्यान, भगड़ावत हो गया गेला रे जारी बिगड़ी श्यान। मर कोई मत

इस लोक भजन के साथ ही आज का खेती नमस्ते कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम सुने मानस गान, भाग संख्या 330।

कुंभकर्ण वध के बाद युद्धभूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाद के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नागपाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने। सुप्रभात। सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है आज भगवान सिंह की ओर से। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं एक वार्ता। सुखी जीवन का मूल मंत्र, तनाव प्रबंधन कला। वार्ता करें डॉक्टर शिव कटारिया। आइए सुने।
1: सभी सम्माननीय श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। चुनौतियों से भरी इस जीवन यात्रा में तनाव का आना तो तय है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि तनाव को दूर रखने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ रुककर यह समझने की जरूरत है कि जिस तरह हर ताले की चाबी, हर प्रश्न का उत्तर तथा प्रत्येक समस्या का समाधान मौजूद है, तो फिर तनाव से घबराना क्यों है? आज के प्रतिस्पर्धी दौर में जब गांव गुहार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का माहौल है, महंगाई अपने चरम पर है, तब प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करने के दौरान बहुत सारे लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव में हो रही निरंतर वृद्धि से मानसिक व शारीरिक परेशानियां भी निरंतर बढ़ रही हैं। दुख तब होता है जब तनाव को न झेल पाने के कारण कुछ लोग जीवन से क्विट कर जाते हैं। यह तो कतई उचित नहीं है। जीवन जैसा भी है अनमोल है, उसे फेस करने में ही समझदारी है। जीवन है तो तनाव तो आएगा ही, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थिति को यदि समझें तो तनाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तनाव के कई कारण हैं, जिनमें अशिक्षा के कारण उपजी अज्ञानता व समाज में बनी असंतुलन की स्थिति, जीवन जीने की कला का विधिवत ज्ञान न होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा अन्य मीडिया माध्यमों से परोसी जाने वाली दिग्भ्रमित कर देने वाली सामग्री भी तनाव का एक बड़ा कारण बन रही है। दैनिक जीवन में उपलब्ध जनोपयोगी सेवाओं में मौजूद विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार समाज में तनाव की परिस्थितियों में वृद्धि कर रहा है। जीवन के दर्पण में झांकने पर मालूम पड़ता है कि सेल्स से जुड़े लोग कई बार टारगेट पूरा नहीं कर पाने के कारण तनाव में आ जाते हैं। कोई नौकरी न मिल पाने के कारण तो माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर, अकेलापन, अनियंत्रित खान पान से बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर के भी लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। जीवन के सफर

जब डिमांड थ्रेटफुल जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और हमें उस समय ये महसूस होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हम उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें तनाव होता है। जिंदगी की यात्रा में एक मुसाफिर के रूप में हम सभी को भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता ही है। इनसे उत्पन्न मानसिक तनाव के संभावित नुकसान के डर से हम तनावग्रस्त होते चले जाते हैं। इस तनाव को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, किंतु इसका सटीक प्रबंधन करके तनाव से काफी हद तक अपना बचाव अवश्य कर सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेगेटिव बिहेव को लेकर हम तनाव में आ जाते हैं, कई अवसरों पर तो कई बार रिलेशनशिप की वजह से तनाव के हालात पैदा हो जाते हैं। विभिन्न तरह के शोध परिणामों में यह बात उभर कर आई है कि सही तरीके से तनाव प्रबंधन नहीं कर पाने की वजह से हमें शारीरिक इफेक्ट यानी प्रभाव झेलने पड़ते हैं। ऐसे में तनाव का शिकार व्यक्ति तेज सांस लेने लगता है, सोना भूल जाता है या फिर सारा दिन सोता ही रहता है, उसे पसीना आने लगता है, उसे बहुत गुस्सा भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में तनाव से प्रभावित व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है, व्यक्ति में एनर्जी नहीं बचती है यानी एनर्जी कमजोर होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति अपने इमोशंस को संतुलित नहीं कर पाता, बहुत सी चीजें उससे मिस होने लगती हैं, उसे भूलने की आदत पड़ जाती है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। तनाव को कंट्रोल न कर पाने के कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। शोध में यह भी सामने आया है कि तनाव का असर कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति हृदय रोग को भी आमंत्रित कर बैठता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति का वजन कभी कम तो कभी अधिक होने लगता है। साथ ही तनाव के शिकार व्यक्ति की मेमोरी अर्थात याददाश्त पर भी विपरीत असर पड़ने लगता है। बड़ी ही सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को तनाव से घबराने या डरने के बजाय तनाव प्रबंधन की कला को समझना व सीखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए व्यक्ति को अपने परिवारजनों के साथ संबंधों को निरंतर बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। अपने सुख दुख की बातें अपने फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करने से निश्चित ही तनाव कम होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक जीवन में आप अकेले नहीं रह सकते। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए अपनी भावनाएं साझा करने के लिए। इसलिए हमारा प्रयास हो कि पब्लिक रिलेशंस को मजबूत किया जाए। इससे आपको न केवल खुशी मिलेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। यह भी तनाव कम करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम तनाव प्रबंधन की कला के जरिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें हर रोज आधा या एक घंटा एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना चाहिए। इसे चिकित्सकों ने फायदेमंद बताते हुए प्रमाणित किया है। प्रकृति से निरंतर कनेक्ट करना भी तनाव प्रबंधन का बेहतरीन उपाय है। प्रकृति से जुड़ाव के लिए ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारे पेड़ लगे हों, बहुत सारे फूल खिले हों, या फिर कहीं सुंदर तालाब हो, झील या फिर झरना हो, कहीं सूर्योदय होने की खूबसूरत लोकेशन हो, या फिर सूर्यास्त का सुंदर व मनमोहक दृश्य नजर आए, आकाश या हवा को महसूस करने वाली बेहतरीन लोकेशन हो। ऐसे स्थानों का निरंतर विजिट करते रहने से स्ट्रेस में निश्चित ही कमी आती है। साथ ही हम बागवानी के शौक को, रुचि को डेवलप करते हुए घर में गमले लगाएं, जिनमें अलग अलग वैरायटी के खूबसूरत फूल लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें तथा आवश्यकतानुसार खाद पानी दें, तो इससे भी तनाव में कमी आती है। अपने स्वभाव को सरल व सौम्य बनाने पर भी काम करें, क्योंकि जिद व अकड़ से भी तनाव में वृद्धि की संभावना निरंतर बनी रहती है। तनाव प्रबंधन के लिए थोड़ा वक्त ऐसा भी निकालें कि आप बच्चों के साथ खेल सकें। जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बच्चों को बनाया ही ऐसा होता है। बच्चे भी इससे खुश होते हैं। इस गतिविधि से भी स्ट्रेस कम होता है। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन की यात्रा बिना विघ्न के चलती रहे, तो इसके लिए हमें अपनी दैनिक आदतों को ठीक करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। माइंड को कूल रखते हुए खुशियां बांटने की आदत को विकसित करें, इससे भी तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अपनी जीवन यात्रा में लोगों से इंटरेक्ट करें, उनके साथ एंगेज रहने की कोशिश करें, लोगों की बातें सुने और उचित होने पर उन पर विश्वास भी करें। साथ ही उनका विश्वास जीतें भी, जो खुश रहते हैं तथा आसपास के लोगों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, इससे भी तनाव में कमी आती है। और कहा भी गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तनाव

0: प्रबंधन के लिए दिनचर्या में अधिक ठंडे पेय या सोडा के उपयोग से परहेज करें। इससे भी तनाव में बढ़ोतरी होती है। जल का सेवन अधिक से अधिक करें, यह हेल्थ के लिए बेहतर बताया गया है। ना चाहते हुए कई बार हम किन्हीं कारणों से टेंशन में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास अगर वक्त हो तो लंबी सैर पर निकल जाएं और तब तक वॉक करें जब तक कि आप थक ना जाएं। यदि इसका लॉजिक समझेंगे तो पता चलेगा कि शारीरिक तौर पर थकने से हमें अच्छी नींद आएगी। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि लॉन्ग वॉक पर खुद से बातें करें। इससे निश्चित ही तनाव कम होगा। आजकल हालात और परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि बिन बुलाए मेहमान की भांति तनाव अचानक आ धमकता है। ऐसे में विद्वान समझाते हैं कि तनाव की घड़ियों में विशेष रूप से भगवान पर भरोसा करें तथा प्रार्थना करें। इससे तनाव कम होगा तथा सुकून का एहसास होगा। कई बार तनाव के चलते रात्रि के समय नींद नहीं आ रही हो तो ऐसे में स्वयं को समझाएं कि आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए ही काम करते हैं, यानी स्वयं को उनका नौकर मानें। रात को सोने से पहले कार्यभार ईश्वर को सौंप दें और उनसे मन ही मन आग्रह करें कि मैंने आज का काम बेहतर ढंग से किया और अब मैं सोने जा रहा हूं। अगले दिन फिर से अपने कार्य का चार्ज लेकर बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी निभाएं। इस तरह प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करेंगे तो इससे निश्चित ही तनाव के ग्राफ का लेवल स्वयं ही नीचे गिरता दिखाई देगा। हमें यह भी समझना होगा कि जिंदगी के सफर में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार अचानक किसी घटना के घट जाने पर आप टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें उस घटना वाली जगह से फौरन हट जाएं, वहां खड़े या बैठे ना रहें। उस पोजीशन से मूव कर जाने पर आपको तनाव से कुछ राहत मिलेगी। दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार से अचानक आप गुस्से में आ जाते हैं, जिससे आपके तनाव का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप वॉक कर सकते हैं, एक दो गिलास पानी पी सकते हैं। इससे भी तनाव में कमी आती। चैलेंज भरे वर्तमान दौर में हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब बहुत अधिक हाई टेंशन को वो व्यक्ति फेस कर रहा होता है। इन तनाव की घड़ियों में इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचें। तनाव के उन पलों में जिंदगी का कोई भी बड़ा एवं महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, बल्कि उसे तत्काल पॉज कर दें और स्वयं को समझाएं कि इस पर मैं 24 घंटे बाद निर्णय लूंगा, क्योंकि अत्यधिक तनाव के समय आपका एक गलत फैसला जीवन भर के पछतावे का सबब बन सकता है और 24 घंटे के बाद शांत मन से लिया गया निर्णय संभवतः आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो। तनाव की मुश्किल घड़ियों में स्वयं को समझदार बनाएं, इसके लिए दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचें। ऐसे समय में अपने पसंदीदा कार्यों को करें, जैसे महिलाओं को शॉपिंग पसंद होती है, वे शॉपिंग करके टेंशन के टाइम को पास करें। तनाव से दूर जाने के लिए अपनी पसंद की मूवी देखें, फेवरेट म्यूजिक सुनें। कोई इंडोर या आउटडोर खेल पसंद है तो वह गेम खेलें। ऐसी कोई भी गतिविधि या एक्टिविटी करें जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो। इससे निश्चित ही स्ट्रेस में कमी आएगी। सीधी स्पष्ट व दो टूक बात विद्वान समझाते हैं कि स्ट्रेस से बचने में ही समझदारी है और इसके लिए बदलते वक्त के साथ स्वयं को अपडेट व एडजस्ट होने की आदत को विकसित करें। हो सके तो खुद को फ्लेक्सिबल नेचर वाला बनाने का प्रयास करें। शोधकर्ता सलाह देते हैं कि 1 माह से अधिक समय से लगातार आप यदि तनाव में हैं तो चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि जीवन अनमोल है। इस जीवन का भरपूर आनंद लें, स्वयं को निरंतर सकारात्मक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। तनाव के क्षण भी अंततः गुजर जाते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जीवन को आनंद से जिएं, जीवन से क्विट नहीं करें बल्कि समझदारी से इसमें फिट होकर अंत तक अपनी जीवन यात्रा को यादगार बनाएं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, वार्ता आपने सुनी सुखी जीवन का मूल मंत्र, तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार थी डॉक्टर शिव कटारिया। आइए हम बात करें समय की महिमा की। यह हम सभी जानते हैं कि समय सबसे अनमोल है, शक्तिशाली संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। ये राजा और रंक को राजा बना सकता है।

और इसके सदुपयोग से ही जीवन में सफलता और सार्थकता हासिल होती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और निरंतर बहता रहता है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी नहीं लौटता। श्रोताओं, समय का अनुशासन व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। हर काम को सही समय पर पूरा करना एक सफलता की कुंजी है। समय का पाबंद इंसान समाज में हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनता है। जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं, वे बाद में केवल पछतावा पाते हैं। इसका मतलब है कि आज कर कल पे इसको मत लेके जा, यानी कि जो काम करना है वो आज का आज ही हम कर लें, तो समय हमारा साथ देता है। श्रोताओं, अच्छे और बुरे दिन समय के ही पहिए पर घूमते रहते हैं। समय की महत्ता को समझने वाले लोग कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते। हर एक क्षण नए अवसर लेकर आता है, जिसे पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम समय को पहचाने, समय के साथ निरंतर हम चलते रहें, रुके नहीं, क्योंकि जिसने समय को पहचाना वो कभी पीछे नहीं रहता, हमेशा समय के साथ चलें। काम हमेशा आपका अच्छा होगा और पूरा जीवन भी आपका संवर सकता है। आइए सुने ये गीत।

काम क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम भूतनाथ, और इसे गाया था हरिहरन सुखविंदर सिंह ने। गीतकार जावेद अख्तर और संगीत विशाल शेखर का था। आइए बात करें, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, एक बेहद गहरा दार्शनिक विचार है। इसका अर्थ है कि जो अंतिम और शाश्वत सत्य है, वही कल्याणकारी शिव है और वही परम सुंदरता यानी कि सुंदर स्वरूप है भगवान शिव का। भगवान शिव केवल एक पौराणिक देवता नहीं, बल्कि इस समर्पण संपूर्ण ब्रह्मांड की परम चेतना और सच्चाई के प्रतीक है। श्रोताओं, सत्य यानी कि ट्रुथ, जो कभी नहीं बदलता, काल और समय से परे है, वह सत्य है। शिव जो सबका कल्याण करे, मंगलकारी हो और जिसका संपूर्ण सृष्टि उसमें ही समाहित है। सुंदर की बात करें, जो सत्य है और कल्याण से उपजा, वही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है वही सुंदर है। शिव ही सत्य का अर्थ है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का परम और शाश्वत सत्य है। अनादि और अनंत से शिव की न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। वे संसार के मूल आधार और शुद्ध चेतना का प्रतीक है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। जो परम सत्य है वही सबका हित करने वाला है। आइए सुने ये गीत।

सत्यम शिवम सुंदरम। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और साथियों को सुना, गीतकार नरेंद्र शर्मा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं, बात करें सत्यभाषी बने। सत्यभाषी यानी जो हमेशा सत्य बोलता है, और सत्यभाषी बनना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। सत्य बोलने से मन को शांति मिलती है, समाज में सम्मान बढ़ता है और विश्वास कायम होता है। हमेशा सच बोलने के लिए अपने आचरण में कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय और मधुर बोलें, ऐसा सच न बोलें जिससे किसी का दिल दुखे। सत्य हमेशा शांत और हितकारी होना चाहिए। झूठ बोलने की शुरुआत अक्सर डर से होती है, परिणाम की चिंता किए बिना सच बोलने का साहस हमें रखना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से बचें। बोलने से पहले ये जरूर सोचें कि आपकी बात सच और उपयोगी है या नहीं। कई बार लोग फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, संतोष का भाव हमेशा में रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारा फायदा हो इसके लिए हम झूठ बोल देते हैं, वो गलत है। सच बोलने वाले व्यक्ति का अंतःकरण हमेशा साफ और हल्का रहता है। समाज और परिवार में ऐसे व्यक्ति पर सब भरोसा करते हैं। सत्य बोलने वाले को कभी कुछ छुपाना नहीं पड़ता, जिससे उसका आत्मविश्वास हमेशा उच्च रहता है। तो श्रोताओं, हमें हमेशा सत्यभाषी बनना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आइए सुने ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक

0: छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक का शीर्षक है, हाइब्रिड और EV कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिर

0: मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged a true people's movement

0: expectancy, better health care, and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, hills are fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवें आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की समत में काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की ये कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद को अपने फैसलों के मरकज में रखें।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।

0: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़िश्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद, वक़ार और मजमूई कौमी शनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत और कौमी परचम का एक साथ होना हुब्बुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा योम आज़ादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाईस होने वाली तकलीफों, मसाइब और बेघर होने जैसे हौलनाक वाकयात को याद रखा जा सके। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में खामोश मार्च निकाले जाएंगे। मुल्क की तकसीम से मुतालिक नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही सकाफत की वजारत ने लोगों से कौमी परचम पर फख्र का इजहार करते हुए इसे लहराने और कौमी गीत वंदे मातरम को सीखने और गाने की हौसला अफजाई की है। बैरून मुल्क भारत के 200 से ज्यादा सिफारतखाने, हाई कमिश्नर और कौंसिल खाने इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करेंगे। इस साल की अहम तकरीब सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले है जिसमें 54 भारतीय मिशंस शिरकत करेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसिल जनरल पर खत्म होगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात पुदुचेरी पहुंचे जहां लोक निवास में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जनाब शाह गोरी मैदू के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में पुदुचेरी पुलिस को खसूसी परचम पेश करेंगे। सदर जमहूरिया ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस को उनकी गैर मामूली खिदमात, नज्म व ज़ब्त और मुमताज़ हुसूलियाबियों के एतराफ़ में पुलिस कलर अता किए जाने का ऐलान किया था। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ शाखों के जवान खसूसी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन, वजीर आला एन रंगासामी और उमूर दाखिला के वजीर एम ए निमिश्वाम भी मौजूद हैं। दोपहर को जनाब शाह पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुदुचेरी से विभिन्न इसनाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आज़ादी की जद्दोजहद का एक नाकाबिल फरामोश बाब है जिसने बरतानवी हुकूमत के जुल्म जबर और नाइंसाफी के खिलाफ मुसल्ला इनकलाबी तहरीक को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल की क़्यादत में बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी बेमिसाल जुर्रत और अज़्म के ज़रिए बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुल्क के वसाइल उसके अवाम की मिल्कियत हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क काकोरी ट्रेन एक्शन के तमाम अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की हमेशा एहसान मंद रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया है। इन तकरूरियों में सबसे ज्यादा 15 जज मद्रास हाई कोर्ट के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कानून और इंसाफ की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तकरूरियों में 20 वकील और 10 अदालती अफसरान शामिल हैं। मद्रास हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 15, कलकत्ता हाई कोर्ट में 8, कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1 जज की तकरूरी अमल में आई है। ये तकरूरियां सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मशावरत के बाद की हैं। नए तकरूर करदा जजों से तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में अपने ओहदे का हलफ लेकर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इन तकरूरियों से चारों हाई कोर्ट्स में जजों की

0: रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इनकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातिन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8:45 हुए। आइए अब सुने सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज नरेंद्र चंचल को हम सुनते हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप नरेंद्र चंचल को सुन रहे हैं।

0: इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। सवेरे के 9 बजने वाले कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया, कहा राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानी है, हमारे वीर जवानों की शहादत की निशानी है, तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है।

0: बोल। साल 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। इधर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में आज राज्य स्तरीय तिरंगा रैली निकाली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन होगा। ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस, आर्मी के जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिक भाग लेंगे। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीख।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि अरुंधति चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या विश्नोई राजस्थान के गौरव हैं। इनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री कल जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में कॉमनवेल्थ 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर में बन रहे महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय से प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
2: खेल के क्षेत्र में जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का केंद्र बनेगा। अब तक 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिले। इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।
1: आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

0: इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आदिवासी दिवस को लेकर वहां लोगों में उत्साह का माहौल है।
1: ढोल कुंडी शहनाई विभिन्न वाद्य यंत्रों की गूंज से वागड़ अंचल चारों ओर से गुंजयमान हो चुका है। जल जमीन जंगल और पर्यावरण का संरक्षण देने, सिर पर पगड़ी, हाथों में तीर कमान, कमर में लटकी तलवार, पीठ पर ढाल, पैरों में घुंघरू, ढोल की थाप पर थिरकते आदिवासी बरसों पुरानी संस्कृति परंपराओं का निर्वहन करते हुए कहीं गैर नृत्य तो कहीं राणा पुंजा भील वीर कालीबाई गोविंद गुरु की प्रतिमाओं पर मल्यार्पण के साथ नमन कर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। आज भी कई जिलों में बरसात की झड़ी लगी हुई है। राजधानी जयपुर में कल रात से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। चूरू के सादुलपुर, रतनगढ़ और सरदार शहर में भी अच्छी बारिश हो रही है। यहां निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से तीन दिन तक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ हिस्सों में मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
2: देखिए, पिछले दो दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। इस साल यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 4,80,000 से ज्यादा हो गई है। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होना है। बाड़मेर में कल एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर कुर्जा फाटे के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने चारों युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों व्यक्ति बालोतरा जिले के धोरी मन्ना इलाके के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए जजों की नियुक्ति की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। नवनियुक्त जज जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में जजों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं

0: को संबोधित किया, कहा राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी, आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9:10 हुए। कार्यक्रम सुने मरुमंगल। कलाकार हैं ओम प्रकाश भाट।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे मरुमंगल, कलाकार हैं ओम प्रकाश भाट, कॉटन सिटी चैनल से इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं।

इसी लोकगीत के साथ ही आज का मरुमंगल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश भाट के गाए कुछ लोकगीत सुने। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम अकेले हम अकेले तुम, और इसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीत अन्नू मलिक का था। आइए अब सुने फिल्म इंसाफ का ये गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। गीतकार समीर हैं और संगीत निखिल विनय का है।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने फिल्म सिलसिला है प्यार का ये गीत आपने सुना। आइए अब सुने फिल्म वक्त का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीत अनु मलिक का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने कुमार सानू और प्रभा की आवाज़ में फिल्म, सुनियो सौरजो से। गीतकार हैं समीर और संगीत है संजीव दर्शन का।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में आपने कुमार सानू की अग्नि को सुना। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए कार्यक्रम सुने आज के फनकार फिल्म संगीत कार्यक्रम।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से भगवान सिंह परिहार स्वागत करता है आप सभी का। श्रोताओं, आज के फनकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बॉलीवुड के इतिहास के सबसे सफल और लोकप्रिय संगीतकार जोड़ियों में से एक थे। इस जोड़ी में लक्ष्मीकांत यानी शांताराम कुदलकर मैडोलिन वादक और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा वायलिन वादक शामिल थे। दोनों ने 1963 से 1998 के बीच लगभग 750 फिल्मों में शानदार संगीत देकर हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया। इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत का जन्म 1937 और प्यारेलाल का जन्म 1940 में हुआ था। कम उम्र में ही दोनों को परिवार की आर्थिक मदद करनी पड़ी। दोनों की मुलाकात लता मंगेशकर के परिवार द्वारा चलाई जाने वाली बच्चों की संगीत अकादमी सुरेल कला केंद्र और मुंबई के एक क्रिकेट मैदान पर हुई थी। बतौर वादक शुरुआत मुख्य संगीतकार बनने से पहले दोनों ने एक बड़े संगीतकारों जैसे कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत के शुरुआती दिनों के स्टूडियो में कार्य किया और यहाँ बतौर वादक और सहायक के रूप में इन्होंने काम किया। उन्होंने 1963 के फिल्म पारसमणि से बतौर स्वतंत्र संगीतकार की शुरुआत की और 1964 की फिल्म दोस्ती से उन्हें भारी प्रसिद्धि और पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत के निधन के साथ यह जोड़ी टूट गई। संगीत की विशेषता और उनकी शैली की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत मैडोलिन और प्यारेलाल वायलिन में पश्चिम संगीत के उस्ताद थे। उन्होंने संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रेशन को अनूठा मेल होता था। और जैसा कि हमने बात की कि उनकी जो शुरुआत है फिल्म 1964 में दोस्ती से हुई, आइए सुने इसी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, गीत आपने सुना, दोस्ती फिल्म से हमने लिया था और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया। गीतकार मजरू और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनको हम आज याद कर रहे हैं। श्रोताओ, इनकी विविधता की अगर बात करें तो उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वह भावुक गज़लें हों या धमाकेदार डांस नंबर या लोक संगीत या देशभक्ति गीत, सभी तरह के गाने में इन्होंने संगीत दिया। इस जोड़ी ने अपने करियर में रिकॉर्ड 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। ये एक बड़ी बात है। प्रसिद्ध फिल्मों की अगर हम बात करें तो अमर अकबर एंथोनी, कर्ज, बॉबी, मिस्टर इंडिया और सरगम जैसी फिल्मों के गाने आज भी लोगों की जुबान पर है। बेहतरीन गानों में इन्होंने संगीत दिया और बात करें संगीत करियर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की, लक्ष्मीकांत से मुलाकात संघर्ष के इन दिनों में उनकी मुलाकात लक्ष्मीकांत शांताराम यानी कि कुडालकर से हुई और दोनों ने मिलकर एक अमर संगीत जोड़ी बनाई। इसके लिए इन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। 1980 के दशक के मध्य में उन्होंने प्यार झुकता नहीं, 1985 में जो फिल्म थी उन्हें संगीत दिया, गुलामी फिल्म में संगीत, मेरी जंग, सुर संगम, संजूग, तेरी मेहरबानियां, नगीना, स्वर्ग से सुंदर, आखिरी रास्ता, कर्मा, कई ऐसी हिट फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोता अंतराल से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मुलाकात क्रिकेट के मैदान पर हुई थी। जब वे 15 और 12 वर्ष के थे, वे गहरे दोस्त बन गए, साथ मिलकर संघर्ष किया और 35 वर्षों तक साथ मिलकर बेहतरीन संगीत का निर्माण किया। इनकी LP की सफलता में एक बड़ा योगदान सुरों की रानी लता मंगेशकर का भी था। उन्होंने इस जोड़े के लिए 712 गाने गए, तो ये बड़ा ही अद्भुत एक अद्भुत जोड़ी थी। आइए सुने ये गीत।

गीत आपने सुना, फिल्म का नाम राम लखन, और इसे गाया था लता मंगेशकर ने। आइए आप सुने बॉबी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। और आज हमने बात हम कर रहे हैं उन्हीं के हम संगीत बद किए गीत भी सुन रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। आइए सुने ये गीत।

अनुरोध, अभी आपने इस फिल्म में किशोर कुमार को सुना, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। आइए अब सुने फिल्म कर्ज का ये गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार आनंद बख्शी हैं। आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आज के फनकार, और आज के फनकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, महान संगीतकार पे हमने बात की और गाने भी हम सुन रहे हैं। कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए अब सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया फिल्म लोफर का ये गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं आनंद पक्षी।

आइए अब सुने लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में फिल्म प्यासा सावन फिल्म का ये गीत आप सुने, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और गीतकार हैं संतोष आनंद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आज के फनकार, और आज के फनकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को आप सुन रहे हैं। आइए अब सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिनेत्री फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और अनवर की आवाज़ में, और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं और गीतकार आनंद बख्शी हैं।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म अनुराग के इस गीत के साथ। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत एसडी बर्मन का। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा ने। गाँव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश जागड़ा ने। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। इसी गीत को सुनना चाहा है नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी ने, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

लीजिए, अब सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है चरस और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू ने। एटा रोड गंज डूडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, शेख मोहम्मद कलीम, डीएच बच्चन। सिद्धार्थ नगर दरियापुर भांबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। सांगली जिले के जल शहर से अल्ताफ हुजरे, रोफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम ने।

लता मंगेशकर को लीजिए सुनते हैं फिल्म बॉबी में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है फवारा चौक वार्ड नंबर 6 जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची, सोमल और कार्तिक समस्त सोनगरा परिवार ने। ऊपर कोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनावास, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ने। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढींगरा ने। गांव अरायन से इसी गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल ने। बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया ने। कुलविंदर सिंह गांव 4M से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसप्रीत। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा ने। चंडीगढ़ से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सतीश अनेजा ने और बिमला अनेजा ने।

लीजिए, अब सुनते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये नगमा आप सभी की फरमाइश पर। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, हाफिया, इब्राहिम सद्दाम। चक 14 PSP से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराक विरक। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने डोंडी लोहारा बालोद। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार।

देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और पोता मास्टर अल अबीर ने गांव गोपी खिरिया तहसील भंडेर से जिला दतिया से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और इनका प्यारा बेटा लक्ष्य, आज़ाद नगर लक्ष्य हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, सूरतगढ़ वार्ड नंबर 10 से मनसा राम जी, श्रवण कुमार, अशोक कुमार, पवन कुमार, भगवान राम, मनोज कुमार, नितेश करण और कृष्णा ने।

आप सभी की फरमाइश पे आइए सुनते हैं फिल्म दुनिया का ये नगमा। गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव तरड़, हिमानी जाखड़, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, बठिंडा रोड मंडी डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया नारंग, केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा और थानेदार भालूराम जी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग टेलर, पूना राम दिवांगन, कृष्णा दिवांगन, जिला रतलाम एमपी से जगदीश थाकड़ा नायमा, श्रीमती रंजूबाई थाकड़, युवराज सिंह थाकड़, शिवांगी थाकड़, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष दीपल, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढोकिया, दोहिती, ईवा धारणिया ने।

ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था समाधि। कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म दुनिया का ये नगमा, आवाज़ आशा भोंसले और किशोर कुमार की है, और फरमाइश हमें लिख भेजी है अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर ने, यामिनी, उदयमन और अर्पिता ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कमल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार ने। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, अमरजीत सुथार, सुनील सुथार, मोहन सुथार, भजन लाल मेला, नरेंद्र सुथार और कैलाश ने। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद और राजेंद्र कटारे ने। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, राजदारानी, हिना कोसर ने। सादुल शहर से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है राम कुमार रिवार्ड ने और चंद्रकला रिवार्ड। जिला अब्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल,

लता मंगेशकर को लीजिए सुनते हैं फिल्म द ट्रेन में, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा ने, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। जिला नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। जिला कासगंज गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक और

तन्वी गोहर, जयपाल यादव, रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर, आदर्श पाल सिंह जोशन, गुरमन सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, सर्वजीत सिंह जोशन, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद सुहेल अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, चक 58 NP रायसीनगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, हरबंश लाल, मनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी मलखट, मोनिका, गीतांजलि मलखट व पूरा मलखट परिवार। गांव दोलेवाला, जिला मूंगा, पंजाब से स्वर्ण सिंह,

इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाला से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर अरोड़ कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर, बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और शगुन बारासा, चक साथ डीबीएन भादू वाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण, बिटिया योगेश्वरी, रणजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भगानिया, हरनेक सिंह भगानिया, गांव पंचायत पठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और सूरज कुशल वर्मा ने रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो, पर्ल विलिस ने, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा जुबेर, अंजुमन खान, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, शोहरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने

आरजू फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत के लिए मैसेज हमारे पास आया है सीताराम कांगड़ा का, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकिता कांगड़ा का। बड़ा बम चौक खड़वा, मध्य प्रदेश से ममता, अंजय और बेबी किट्टू। फाजिल्का रोड मलोट से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, दिशा मोहला, जगतार जग्गा ने। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां। तहसील भादरा अनूपगढ़ शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, किनू और पंकज सारस्वत ने। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या खुराना, मेघा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज, वो छोटू खुराना ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते और सुना चाहा है आप सभी ने। रानी बाजार से रानी झम्प बिट्टू झम्प, गांव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव हर्षिता श्रीवास्तव बिमल श्रीवास्तव आशा राधिका और श्रीवास्तव परिवार, गांव तंगोरी जिला महौली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसबीर कौर महिकप्रीत कौर सहजीत सिंह, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा सबिश्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी ने।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के गाए इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज 12:05 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा दिन में 1 बजे का। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम 1:05 पर महिला जगत। प्रस्तुतकर्ता होंगी रजनी मोदी। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा समाचार का। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। उर्दू सर्विस आप सुनेंगे दोपहर को 3 बजे।

शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युवाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30 का। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:45 का। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम चौपाल का। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। स्पोर्ट्स स्कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 का। 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत।

9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अखिल भारतीय रविवारीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात 10 बजे, और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 बजे का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोता, हम आज बात करते हैं मौसम की। मौसम भी कितना खूबसूरत कलाकार है। कभी धूप बनकर चेहरे पर मुस्कान ले आता है, तो कभी ठंडी हवा बनकर मन को सुकून देता है, और कभी बारिश की बूंदों के साथ पुरानी यादों का पिटारा खोल देता है। कहते हैं मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, कभी कभी मौसम हमारे मन के अंदर भी उतर जाता है। और जब मौसम हो सुहाना, तो संगीत अपने आप याद आने लगता है। तो आज हम भी लौटेंगे 80 के दशक की उन खूबसूरत धुनों की ओर, जिनमें मौसम भी है, मस्ती भी है और यादों की मिठास भी है।

मधुर गीत गुनगुना रही है और बारिश के साथ गर्मा गर्म चाय, खिड़की के बाहर गिरती बूंदें और रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत। इससे खूबसूरत मौसम की तस्वीर और क्या ही हो सकती है। मौसम चाहे गर्मी का हो या बारिश का, 80 के दशक के गीतों की अपनी ही ताजगी होती है। तो लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मंजिल का ये नगमा।

श्रोता, हम बात कर रहे थे मौसम की। बारिश की बूंदें जब धरती को छूती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति को

श्रोताओं, कभी आपने महसूस किया है कि एक ही मौसम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एहसास लेकर आता है? किसी के लिए बारिश बचपन की याद है, किसी के लिए चाय की प्याली, और किसी के लिए सफ़र, और किसी के लिए कोई पुराना गीत। यही तो संगीत की खूबसूरती है, गीत वही रहता है लेकिन हर बार सुनने पर कहानी नई लगती है। अब मौसम की इसी खूबसूरती को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और नगमा।

अनवर और सुलक्षणा पंडित के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है गाजर की उन्नत खेती।
1: कार्यक्रम सुनणिया सगळे परिवाराने भाई राजन का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों आपा सगळा की खेती खड़ मिणक हाँ, और हमेशा आपा जीवन में एक ही प्रयास में रहवा का अपने जी की खेती है, बिना आपा किया ज़्यादा सफल बनावा। खेती में आ नाड़ो जी को उत्पादन है, बिना किया बढ़ावा, और मूल रूपों अपनी खेती में हो नाड़ो जी को फ़ायदो है, बिना पहले नाऊँ बेहतर और पहले नाऊँ ज़्यादा किया करा। तो ई कड़ी में क्या आपा कई प्रयोग आपकी खेती गमा करता रहा, कदे कदे आपने फायदो देखने ने मिले तो कदे नुकसान भी हो जाए। पर आपने घर का जी का बड़ा बूढ़ा है, बांगी सलाह आपा माना तो बांगे अनुसार जिको आदमी बदलाव ने स्वीकार करे और बदलाव ने सागे लेके चले, वो जीवन में बहुत सफल हुए हैं। चाला खेती पाती की दुनिया में बात करें, अपने किसान भाई जी का गाजर की खेती टाइम पर करना चाहे है, बांगे खातर के सावधानियां बने रखनी जरूरी है, के बातों को ध्यान रखना है, और किया गाजर की खेती में वे ज्यादा उत्पादन ले सके हैं। आप सगला जाना ही कि गाजर जी की महत्वपूर्ण

આપણી સબ્જી ફસલ હૈ ઇને સાગે સાગે ઇના પાસ સલાદ અચાર હલવા મેં મુરબ્બા મેં ઓર અલગ અલગ તરીકા કા ખાદ્ય પદાર્થા કે રૂપ મેં ભી પ્રયોગ કરા. ગાજર મેં કેરોટીન વિટામિન ઓર કઈ એસા ખનિજ તત્વ પાયા જાવે જેકા આપણે ખાતર બહુત ફાયદેમંદ હુએ. આપણે અગર રાજસ્થાન સહિત ઉત્તર ભારત મેં વાત કરા તો જીતા ભી મેદાની ક્ષેત્ર હૈ ઇંગી ખેતી રબી મોસમ મેં બહુત બડા પૈમાને પર કરી જાવે. वैज्ञानिक और उन्नत तकनीक अगर आप अपनावा तो किसान परिवार के अच्छी गुणवत्ता की गाजर के सागे सागे ज़्यादा उत्पादन भी ले सके हैं. जलवायु की बात करें तो गाजर मध्यम ठंडी जलवायु की फसल है जिका अगर बीज अंकुरण खातर आपने लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले गए 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक समुपयुक्त मान्य जावे. इनकी जड़ गए अच्छा विकास खातर और रंग खातर लगभग 15-20 डिग्री तापमान सबू बढ़िया रहे. ज़्यादा तापमान अगर हो जाए तो फिर के जड़ को रंग आकार और अपनी जी की फसल की गुणवत्ता है वह भी कदे कदे प्रभावित हो जाए. कदे कदे देखा बहुत ज़्यादा पाड़ो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो वह भी अपनी फसल खातर नुकसानदायक हो सके हैं. अपने अगर राजस्थान में बात करें तो देसी गाजर जी की अब लगभग अगस्त तो सितंबर तक और बाकी जी की नारंगी रंगी उन्नत किस्म की गाजर है वह अक्टूबर नवंबर तक आपा भांगी बिजात करा हैं. इमें आपा कतारों कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखा और बूंटा बूंटा की दूरी 8-10 सेंटीमीटर तक रख सका हाँ. बीज को ध्यान रखा आपा 1-1.5 सेंटीमीटर गहरी बीजांत आपा कर लेवा. गाजर की अच्छी पैदावार लेन खातर भुरभुरी गहरी और उपजाऊ माटी है जिकी बा सबू ज़्यादा बढ़िया मानी जाए जिका गमा पानी निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ है. दोमट और बड़ोई दोमट माटी है बा भी बहुत बढ़िया रहा है. माटी के माँ एक तो पर्याप्त जिका जैविक पदार्थ है वह मौजूद होना चाहिए. खेत में कठे भी पानी को जवाब ना हुए इंगी आपा पूरी सावधानी रखा. बहुत ज़्यादा भारी या बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी है जिकी बाबी गाजर की खेती खातर बढ़िया कोनी रहे हैं. एक चीज़ आपा ध्यान रखा कि खेत की माटी को जिको पीएच तापमान है वो लगभग 6-7.5 तक सबू ज़्यादा उपयुक्त माने जावे. ध्यान रखा खेत में जब भी आपा खाद और उर्वरक डाला तो बी टाइम पर अच्छी सड़ड़ी गोबर की खाद को ही प्रयोग करा. ताज़ा गोबर डालें के कई बार आपने फसल ने नुकसान हो जाए. खेत की तैयारी खातर आपने किसान भाई गाजर की जिकी जड़ है बा माटी के अंदर विकसित हो है तो इन खातर विशेष रूपों आपा तैयारी पर ध्यान रखा और एक गहरी जुताई कर गए बिंग बाद 2-3 बार हल्की जुताई कर देवा. माटी ने भुरभुरी और समतल कर लेवा. खेत के अंदर कोई भी प्रकार का पत्थर ढेला पुरानी जड़ा या खरपतवार है तो बाने निकाल गा आपा नष्ट कर देवा और अच्छे तरीकों सड़ड़ी गोबर की खाद मिलावा. जरूरत के हिसाब में अपनी क्यारियाँ या उठड़ी जी की मेड़ा है वे आपा तैयार करा. अच्छी तरीकों सड़ड़ी लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की गोबर की खाद आपा माटी का माँ मिलावा. इनके अलावा 60 किलो नाइट्रोजन 40 किलो फॉस्फोरस 120 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर तक दे देवा. इंगमाऊँ नाइट्रोजन की जिकी आधी मात्रा है और फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपा खेत की जिकी आखिरी तैयारी है बिंग टाइम देवा और शेष बचड़ी जिकी नाइट्रोजन की मात्रा है बाबी जांत के लगभग 45 दिन बाद आपा खड़ी फसल गमा दे देवा. उन्नत किस्म की बात करें तो गाजर की किस्म को चयन है जिको वो स्थानीय जलवायु माटी और बाजार की जिकी मांग है बिंग अनुसार आपने करना चाहिए. प्रचलित किस्म में अगर आप उदाहरण के रूप में बात करें तो पूसा केसर पूसा रुधिर पूसा आसिता 90 प्रकार की जिकी गाजर है जिन्हें आप विलायती किस्म कह देवा. इनके अलावा पूसा मंदाग्नी सिलेक्शन 5 और अपने क्षेत्र खातर जिकी भी और संकर किस्म की गाजर है वे आपा ले सका हम. लाल गाजर की जिकी किस्म है वह उत्तर भारत और राजस्थान का कई क्षेत्र में लोकप्रिय है और किसान परिवार आंगो चयन करता टाइम स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या नज़दीकी कृषि विभाग की जिकी भी नवीनतम अनुशंसा है बिंगी जानकारी रखे और बिने जरूर प्राथमिकता देवे. सामान्य तौर देखा आपा तो गाजर की खेती में लगभग 3-5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तक की जरूरत पड़े और वास्तविक जिकी मात्रा है बा किस्म के अनुसार बीज की गुणवत्ता और बीजांत के विधियों आपा करण लाग रहा बिंगो पर निर्भर करें. अच्छी गुणवत्ता आलो जिको प्रमाणित बीज है हमेशा बिंगो आपा प्रयोग करा और जद भी आपा बीजांत करा बीऊ पहले हमेशा बीज उपचार जरूर करा. बीजांत तो पहले बीज को उपचार करण खातर आपा अंकुरण और बूंटा की जिकी शुरुआती वृद्धि

है बिंग बेहतरी खातर उपचार करा। जैविक विधियों बीज उपचार खातर ट्राइकोडर्मा वर्गा जितना भी लाभकारी जैव एजेंट है बंग उपयोग आपा कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करा और बीज उपचार में हमेशा संबंधित उत्पाद का लेबल और मात्रा को ध्यान रखा। बीजांत की विधि की बात करें आपा तो मुख्य तौर पर सीधा खेत में आपा गाजर की बीजांत कर सका हाँ जी, मैं कतारों कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर तक रखा और बूंटा बूंटा की दूरी आपा 5-7 सेंटीमीटर तक रख सका। बीज ने बहुत ज़्यादा गहराई पर आपा ना बोवा, सामान्य तौर पर 1.5-2 सेंटीमीटर।

0: तो वितरण में अपने आसानी होगी। सिंचाई प्रबंधन में आपने किसान भाई ध्यान रखे कि गाजर में नमी गुज को संतुलित प्रबंधन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजांत के बाद हल्की सिंचाई करा और अंकुरण तक कोशिश करा कि माटी गमा पर्याप्त नमी बनी रहे। बाद में जरूरत के हिसाब वहाँ पर सिंचाई कर देवा और ज़्यादातर सिंचाइयों के खेत में जल भराव हो सके तो इनके खातर ध्यान रखा कि आप जरूरत के हिसाब में सिंचाई करा। अनियमित सिंचाइयों जड़ा के फटन लाग जाए। समान नमी बना के रखा तो अपने अच्छी गुणवत्ता वाली गाजर आराम मिल जाएगी। इनके अलावा बात करें तो खरपतवार को भी अपने विशेष ध्यान रखना है। शुरुआती अवस्था में खरपतवार गाजर की फसल ने काफ़ी नुकसान पहुँचा देवे। बीजांत के बाद खेत की अपन नियमित निगरानी करा। शुरुआती अवस्था में हाथ निराई गुड़ाई भी कर देवा। पौधा ने नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवार निकाला। कतारा के बीच में हल्की गुड़ाई करने के खरपतवार नियंत्रण के सागे माटी भी भुरभुरी हो जाए। इनके अलावा रासायनिक खरपतवार नाशी को प्रयोग आपा स्थानीय कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार ही करा। इनके अलावा गाजर में किए जिया जिया फसल बढ़े तो भांत भांत का कीड़ा कांटा और हरी बीमारी लागे जका कि आपके नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके पूरी जानकारी लेवा और बिंग बाद ही कोई आपा रसायन को प्रयोग करा। फसल की अच्छी देखभाल करा तो आपने के ज़्यादा उत्पादन मिल जाए। समय पर निराई गुड़ाई कर देवा, खेत में पानी ना जमा होने देवा और बुंटा में उचित दूरी बना के रखा। नियमित रूपों कीट और रोग की निगरानी कर लेवा। ज़्यादा नाइट्रोजन को प्रयोग ना करा और माटी की पर्याप्त नमी बना के रखा तो आपा अच्छी फसल ले सका। भाई लोगों आज आ जानकारी ली आपा गाजर की उन्नत खेती पर। अब भाई राजन ने आज्ञा दियो। राम राम।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
2: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये इस वर्ष अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह अभियान आज जनव्यापी अभियान का रूप ले चुका है।
1: 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही ध्वज नहीं है, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए यह ठीक नहीं है, यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
2: आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जनभागीदारी का परिचय दें।

0: पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
1: ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग, निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। जालौर में तिरंगा रैली के साथ जन जागृति अभियान शुरू हो गया है। झुंझुनू, पाली और अलवर में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तिरंगा यात्रा के साथ ही देश की रक्षा और आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दायियों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा रखी गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर बना हुआ है। सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर पानी खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास में बरसा। अलवर, भीलवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, सवाईमाधोपुर और सीकर जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला है। जिले के अनूप शहर, कलाना, भूमपुरा और मक्कासर के पीएचसी प्रमाणित होने के बाद क्वालिटी सर्टिफाइड चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

सावन की ठंडी फुहारों के बीच प्यार से लबरेज अपनी रेडियो सखी रजनी मोदी का नमस्कार स्वीकार करें। बहनों, पूरा उम्मीद करती हूँ कि आज की ये गुनगुनाती छोटी छोटी फुहारें आपको सुहानी लगी होंगी और निश्चित रूप से इसका भरपूर आनंद आपने परिवार के साथ लिया होगा। कुछ विषय जिनकी जानकारी आपसे साझा करूंगी और फिर फिल्मी दुनिया में ले जाकर सावन के कुछ गीत और कुछ प्यार भरे नगमों के साथ हम आनंद लेंगे आज के इस कार्यक्रम का। तो शुरुआत करते हैं इस विषय के साथ। बहनों, विविधता में एकता भारत की सुंदरता का प्रमाण है। यहाँ के कण कण में प्रकृति की सुंदरता समाई हुई है। कोई कोना किसी बात के लिए प्रसिद्ध है तो दूसरा किसी और विशेषता के लिए जाना जाता है। उत्तर में गणराज्य हिमालय जहां हम सबकी रखवाली करता है, वहीं

पश्चिम में भारत के चरणों को धोने वाला विशाल सागर है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करूं तो कश्मीर की वादियां, हिमाचल के बर्फीले पहाड़, पश्चिम बंगाल का समुद्र व राजस्थान के रेतीले टीले भारत की शान है बहनों। इसमें हर जाति का इंसान निवास करता है। आपसी प्रेम भाईचारे की मिसाल भारत के त्यौहार हैं जिससे सब मिलकर मनाते हैं। कुछ जाति व समुदायों को संरक्षित करने के लिए विशेष दिन का महत्व है। विश्व भर में रहने वाले आदिवासी समुदायों के संस्कृति, भाषा और अस्तित्व को बचाने के लिए हर साल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन। आज 9 अगस्त है और आज के ही दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए कुछ देर के लिए हम भी शामिल हो जाते हैं इस आदिवासी जाति के प्रोग्राम में।

मैनों आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन उपलब्धियों और योगदानों को समर्पित है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए

करते हैं। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। इस दिन को भारत के आदिवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें रैली निकालने से लेकर मंच पर झमाझम कार्यक्रम करके मनाए जाते हैं। ये समुदाय अहिंसक होता है, निसर्गवादी समुदाय है और अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। करीब 400 पीढ़ियों पूर्व सभी भारतीय वन में ही रहते थे और आदिवासी थे। विकास के चलते धीरे धीरे उनका पलायन शुरू हो गया, लोग जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे। पहले ग्राम बने, फिर कस्बे, फिर प्रांत, अंत में बने नगर। जो वन में रहे वो वनवासी हो गए और जो गांव में गए वो ग्रामवासी, जो नगर में गए वो नगरवासी। जो वन में रहे उनकी शारीरिक संरचना, रंग रूप, परंपरा और रीति रिवाज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, और जो शहरों और गांवों की ओर जाने वाले थे लोग, उनके रहन सहन में समय के साथ बदलाव आ गया, जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं। कई इलाके जो आज भी आदिवासी इलाके हैं, वहां जाने पर हम देख सकते हैं कि उनके जो पहनावा है वो आज भी वृक्ष की छाल को या पेड़ों के पत्तों से अपने बदन को ढककर अपना जीवन यापन करते हैं, और भोजन पकाने का उनका आज भी वही जरिया लकड़ियों से एक छोटा सा चूल्हा बनाना और उसी में आग जला के जो भी वहाँ मौजूद उनको उपलब्ध है उन्हीं से अपना पेट भरने के लिए खाना बनाना। बहनों जी वो भी रहे हैं, जी हम भी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हम सब के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की है। आदिवासी यदि जंगल में रहते हैं तो उनके लिए भी ईश्वर ने एक अलग से व्यवस्था की है, और जो शहर और गांवों में रहते हैं उनका जीवन भी उसी के भरोसे चल रहा है। भैया जो गांव से शहर में आ गए और जो शहर से आगे बढ़ रहे हैं उनकी बात सुनिए।

भारत की मिट्टी में पला इंसान कभी अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ता, भले वो किसी मजबूरी में देश को छेड़कर कुछ देर के लिए विदेश चला भी जाए, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार, जो उसकी आत्मीयता है, वो कभी नहीं छूटती। और शायद कहीं ना कहीं यही वजह भी है कि भारतीय 100 में हजारों में लाखों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कहीं भी चला जाए, वहाँ पे ये अवश्य सुनने को मिलता है कि आप भारत से हैं, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है। और भारत का व्यक्तित्व, मुझे गर्व है ये कहने में कि भारत का व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत संस्कारी है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों की। राजस्थान अपने किलों और महलों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है बहनों। इसका वन्य पक्ष भी उतना ही अविस्मरणीय है। बाघों से भरी घाटियों से लेकर शांत पक्षी अभयारण्यों व तेंदुओं से आच्छादित ग्रेनाइट पहाड़ियों तक इसमें भारत के विविध वन्य जीव अनुभव मौजूद हैं। आपको रणथंभौर व सरिस्का जैसे प्रसिद्ध बाघ दर्शनीय स्थल मिलेंगे, जहां खंडहर हो चुके किलों, प्राचीन मंदिरों और सूर्योदय के समय चमकती झीलों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में भरतपुर स्थित केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान हर सर्दियों में पक्षियों का स्वर्ग बन जाता है, जहां सारस, बतख, हंस और अनगिनत प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ते ही परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। जैसलमेर के पास में ही स्थित है रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान नाजुक रेत के टीलों और घास की रक्षा करता है, जहां विशाल भारतीय बस्टर्ड, लोमड़ी और शिकारी पक्षी आकाश पर राज करते हैं। यदि आप शांत व अनोखे पर्यटक स्थलों को पसंद करते हैं तो कुंबलगढ़ और माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य जा सकते हैं, जो अरावली पहाड़ियों के जंगलों से घिरे हुए हैं। यदि आप एक बार इन उद्यानों में चले गए तो हमारा मानना है कि ना चाहते हुए भी प्रकृति से प्रेम कर बैठोगे। और क्या कहोगे, आइए सुनते हैं।

ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। बिल्कुल वेनु, राजस्थान के कई प्रमुख उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में फतेह सागर झील के पास स्थित है, जहां सुंदर फव्वारे, कमल के तालाब और संगमरमर के हाथी बने हुए। मंडोर उद्यान ये जोधपुर के पास है, जहां ऐतिहासिक छतरियां बनी हुई हैं, इसके साथ चट्टानी दीवारें और मंदिर बने हुए हैं। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है और बाघ संरक्षित क्षेत्र है। अब बात करते हैं रणथंभौर की, जो लगभग 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खुले मैदान और झीलों की बदौलत ये भारत में दिन के उजाले में जंगली बाघों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा अरावली पहाड़ियों में अलवर जिले में स्थित सरिस्का की शुरुआत एक अभयारण्य के रूप में हुई, फिर ये बाघ अभयारण्य बन गया, जो कि 400 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है। यह बाघों, तेंदुओं, लक्कड़ बग्गो, सियार, नीलगाय, सांभर और बहुत सारे मोरों का घर है। शुष्क पर्णपाती वनों, पहाड़ियों और पांडुपोल जैसे पुराने मंदिरों का मिश्रण इसे और खास बनाता है।

यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और वन्य जीव लाइफ को लाइव देखना चाहते हैं, यानी सामने देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उस राजस्थान के वासी हैं जहां प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। कभी भी आपको सरिस्का जाने का मौका मिले या हमारे अन्य वन्य जीव स्थलों को देखने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा और देखिएगा कि किस तरह से वो अपने जीवन को जीते हैं और हम देखने को लालायित होते हैं उन्हें, वो हमें देखने के लिए उत्सुक होते हैं और हम चाहते हैं कि वे करीब आए। और जैसे वो करीब आते हैं बहनों, एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है, एक अलग एहसास होता है उनको देखते ही, और स्वतः ही मुँह से क्या निकलता है सुनते हैं।

बारिश का मौसम भला किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई इस मौसम का आनंद लेना चाहता है। ये बारिश का मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी लाता है, खासकर बिजली से जुड़ी सुरक्षा के मामले में। पानी और बिजली का संयोजन बेहद खतरनाक हो सकता है बहनों। बिजली के झटके, आग और यहाँ तक कि जानलेवा दुर्घटना भी हो सकती है। बारिश और आंधी तूफान के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहता है और बिजली के तारों या खंभों से करंट फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए सावधान रहें। अपनी सुरक्षा के लिए खुले में पेड़ के नीचे या बिजली के पोल के पास बिल्कुल खड़े ना हों। बहनों आनंद लिए अपने घर में खड़े होकर, अपने घर के अंदर रहकर, जैसे भी चाय की चुस्कियों उसके साथ बारिश की बूंदों का मजा लें। क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की? और यदि फिर भी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बारिश रुकने के बाद ही आप बाहर निकलें, क्योंकि जो परेशानी है वो बता कर नहीं आती। मानव का जीवन बड़ा अनमोल है बहनों, और जिंदगी जीना सबका अधिकार। इसे प्यार से, मौज मस्ती से, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिताएं, ना कि डर के साए में। हाँ, मानसून का आनंद लीजिए थोड़ी सावधानी के साथ।

मैनू लंबे इंतज़ार के बाद बारिश की बूंदों का सुख मिलता है और इस मौसम में हमारा मन आनंदित होकर खिल उठता है। इसलिए अपने आनंद की इस यात्रा को जारी रखते हुए बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, फिर कोई टेंशन नहीं। मानसून शुरू होने से पहले वायरिंग, सॉकेट और उपकरणों का निरीक्षण करके खराब होने पर मरम्मत करवा लें। बाहर की साइड में जो लाइटें लगी हैं, पंप और बाहरी सॉकेट मौसम प्रतिरोधी होने चाहिए। मौसम प्रतिरोधी न होने पर बारिश में करंट लगने का खतरा रहता है। गीले हाथों से या फिर गीली सतह पर खड़े होकर बिजली के स्विच को ना छुए। और जब तक बारिश का मौसम है, कोशिश करें कि रबड़ की चप्पल या फिर कुछ ऐसा सरफेस वहाँ हो लकड़ी का, जिसके ऊपर खड़े होकर आप स्विचेस को छेड़ें या ज़रूरत पड़ने पे उसको हाथ लगाएं। फिर भी यदि बारिश हो रही है और आपने उपकरणों का यूज़ करना है तो पहले हाथों को सुखाएं, फिर आप उन प्लग को छू सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। बाकी बारिश का आनंद भरपूर ले बहनों, हमें केवल बिजली के उपकरणों से दूर रहना है। थोड़ा गिर पड़ जाएं तो परवाह नहीं करना, खड़े होकर फिर भीग लेना।

बहनों आइए अब आपको ले चलते हैं हमारी रसोई की ओर। भारतीय रसोई में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या घर में मेहमान आए हों तो खाने के बाद कुछ मीठा देने का रिवाज है। ऐसे में यदि मौसम के अनुसार डेजर्ट तैयार किया जाए तो खाने और खिलाने वाले दोनों का ही दिल और दिमाग तरोताजा हो जाता है। आज हम मौसमी फलों से बनने वाले डेजर्ट के बारे में जानते हैं। मौसमी फलों से बनने वाले डेजर्ट में ताज़े ठंड जो डेजर्ट हैं वो ताज़े ठंडे और पोषण से भरपूर होते हैं। बेहतरीन विकल्प यदि हम देखें तो इसमें मैंगो योगर्ट, ताज़े आम के टुकड़े लेकर योगर्ट, योगर्ट यानी ये जो दही हम जमाते हैं उसका पूरा पानी निकाल के उसको योगर्ट कहते हैं। उस योगर्ट में आम के टुकड़े डालकर और ग्रेनोला की परतें बनाकर तैयार किया हुआ जो योगर्ट है, जो डेजर्ट है, वो बहुत ही टेस्टी होता है। बादाम के दूध में चिया सीड्स भिगो कर रख दें, 2-3 घंटे तक भीगा रहने दें। ऊपर से मौसमी बेरी या आम मिलाकर इसको जब हम खाते हैं तो ये एक नेचुरल मिठास के साथ बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रहता है। दूध में बिल्कुल कम चीनी डालकर कस्टर्ड बना लें। उसमें सेब, अनार, अंगूर, मैंगो, ये सब बारीक काट, मैंगो जैसे बारीक काटना है, अंगूर के दाने, अनार के दाने और सेब को भी बिल्कुल बारीक काट कर इसमें आप मिलाकर आनंद ले सकते हैं एक मौसमी फलों से भरे डेजर्ट का। यदि कुछ नया करना चाहते हैं तो एक नाशपाती को लें। मैंने ये डिफरेंट और बहुत ही स्वादिष्ट डेजर्ट है। नाशपाती को लंबा छील लें, डंठल को ना हटाएं। एक छोटे पैन में इतना पानी डालें कि नाशपाती डूब जाए। इसमें नाशपाती, टी बैग और एक इलायची के कुछ दाने डाल दें। कुछ देर ढक्कन लगाकर उबाल लें, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। ठंडा होने पर सावधानी से निकालें और लंबे पीस करके उसके जो बीज हैं उसको निकाल कर खाएं। एक अलग सा आपको उसका टेस्ट लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रहेगा। मैंने एक पका हुआ खूबसूरत फल प्रकृति की सबसे उत्तम मिठाई है। मौसम का ऐसा उपहार जिसका आनंद उसके पकने पर ही लिया जा सकता है। जब फल किसी पेस्ट्री, केक या कस्टर्ड में शामिल हो जाता है तो वह पल और भी खास हो जाता है। फिर अपनों का साथ हो तो क्या कहने।

वक्त भी बड़े कमाल का होता है दोस्तों। सभी से अपना इंतज़ार करवाता है पर खुद कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, जैसा कि आज इस वक्त है। घड़ी की सुइयां जो है वो इजाज़त नहीं दे रही कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए। आज का कार्यक्रम इतना ही, रजनी को दिया गया नमस्कार।

0: residents and forced more than 20,000 people to flee communities. Premier David Eby announced the emergency as more than 100 wildfires burned across the province. Nearly half of them were out of control. Eby said that some residents were trapped and had to be rescued. The entire community of Summerland, home to about 12,000 people, was ordered evacuated overnight, along with about 8,000 people in and around nearby Peachland. In badminton, India's Ashmita Chalia has clinched the women's singles champion at the Korea Masters tournament today. Ashmita defeated China's Han Qianxi. The shuttler recovered from losing the opening game to prevail 14-21, 21-14, 21-14 in 53 minutes. With this win, she claimed her first BWF title. She has also become the first Indian to win the Korea Masters. And it's a second consecutive women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in the long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallapuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज

0: और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एज वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवायरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी

0: एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डो ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर

0: दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म इज्जत का ये नगमा भी आपने सुना। गीत साहिर का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म आरजू का ये नगमा। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

फिल्म कन्यादान का ये नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और धुन शंकर जयकिशन की। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी इस मजलिस की नशरियात इख्तिताम को पहुंचेंगी।

हमारी इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्राम कुछ इस तरह रहेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी 3:05 पर आप खबरें सुनेंगे। तीन बजकर 15 मिनट पर प्रोग्राम होगा मेरी पसंद, जिसमें आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। तीन बजकर 30 मिनट पर डॉक्टर वारिस अहमद खां का लिखा फीचर सुनिएगा, आगा हशर कश्मीरी। 4 बजे प्रोग्राम होगा फिल्मी मौसीकी, जिसमें आप एक बार फिर फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। चार बजकर पचास

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1,300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को दीगर मकामात पर पहुँचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती विरसे का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। दिल्ली में मस्कूरा मुहिम के तहत लोकसभा से BJP की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलांजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस बार का यौम आज़ादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आज़ादी होगा। उन्होंने कहा कि BJP ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया है जिसके दौरान पार्टी के उहदेदार और कारकुन मुल्क के जांबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल की मुहिम खास अहमियत की हामिल है क्योंकि मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जाबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क को मुत्तहद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि

की बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाईस तहरीक रहेगी। वजीर अजम ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की अब एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि मस्कूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एनआईए ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा अगले चंद रोज तक पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से मुअत्तल रहेगी। हालिया बारिश, यात्रा के रास्ते पर बहाली के काम और खराब मौसम की पेशगोई के तनाजुर में ये यात्रा आरजी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। बालासोर में जलाका और भद्रक में बैतारानी और सलांदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है, जबकि संबलपुर में हीराकुट डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र हुक्काम इंतहाई चौकसी बरत रहे हैं और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। पंजाब में आज सुबह सरन जीटी रोड पर एक कार से टकरा जाने के नतीजे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये कांवड़िए उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा वापस जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निपटने की गरज से शंघाई के दो हवाई अड्डों ने अपनी 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि हुकाम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। कल ये शदीद तूफान ताइवान की राजधानी ताइपी के समेत मुल्क के शिमाली हिस्सों में पहुंचा था, जिसके सबब वहां तेज बारिश हुई। ताइवान की बाज़ हवाई कंपनियों ने भी चीन जाने वाली अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। अमरीकी महकमा दिफा पंटागन ने अमरीका की दिफाई सामान तैयार करने वाली कंपनियों को ये हुक्म दिया है कि वो हथियार बनाने और इनकी फरामी के अमल में तेजी लाएं, क्योंकि ईरान के साथ जंग की वजह से अमरीका के अहम असलाह ज़खायर कम हो गए हैं। इतलात के मुताबिक नायब वजीर दिफा स्टीव फिनबर्ग ने एक मुरासले में दिफाई सनत के रहनुमाओं से कहा है कि इस सिलसिले में अपने मंसूबे के लिए पेश करने के लिए उनके पास 21 दिन का वक्त है। पेंटागन ने दिफाई सामान की पैदावार को वसत देने की खातिर दिफाई सामान तैयार करने वाले बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ फ्रेमवर्क समझौतों पर भी काम किया है, लेकिन उन वायदों पर अमल करना लाजमी नहीं है और इनका इनसार अमरीकी कांग्रेस की तरफ से सरमाया फराम करने पर है। ईरान अपने हुरमुज खोलने से पहले अमरीका से रियायतों का मुतालबा कर रहा है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकर जुलकद्र ने अमरीका के लिए मुतालबात की एक फहरिस्त जारी की है, जिसे पूरा करने के बाद ही ईरान अपने हुरमुज को दोबारा खोलेगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस फहरिस्त में अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करना, अमरीकी फोर्सेस को वापस बुलाना और जंग को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। कौमी सलामती के सरबराह ने अमरीका से लड़ाई के बाइस ईरान को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने और ईरानी साजिशें जारी करने का भी मुतालबा किया है। यूक्रेन ने पेट्रियट फजाई दिफाई निज़ाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की महाना फरामी के लिए अमरीका के साथ एक मुआहदा किया है। बेलग्रेड में साफियों से बात करते हुए यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका यूक्रेन को महाना बुनियाद पर इंटरसेप्टर मिसाइल सप्लाई करेगा। तहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तादाद मुल्क के फजाई दिफाई निज़ाम की जरूरत पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है।

0: जेलेंस्की ने कहा कि 2026 में यूक्रेन को मिलने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की तादाद साल 2025 के मुकाबले काफी कम होने का इम्कान है। अलबत्ता उन्होंने इस मखसूस तादाद के बारे में नहीं बताया। यूक्रेन के सदर ने कल सर्बिया का एक तारीखी और पहला दौरा किया ताकि उसके साथ तआवुन को वसअत दी जा सके। सर्बिया के रहनुमा हालिया बरसों में रूस के साथ अपने पहले से करीबी ताल्लुकात को महदूद करते जा रहे हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिया ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी हान शियान छी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर ये बावकार खिताब हासिल किया। अश्मिता चलिया ने 2024 की एशियाई टीम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने 2019 के जनूबी एशियाई खेलों में भी खवातीन सिंगल्स और टीम मुकाबलों में सोने के तमगे जीते थे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1,300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को दीगर मकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेरी पसंद, समझ लीजिए इस प्रोग्राम में कुछ फिल्मी नक़्मे समाप्त कीजिए। सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब।

जिंगारो, आपने इस फिल्म का नगमा सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में? मुसिकार थे एस एन त्रिपाठी। और अब सुनिए फिल्म जिद्दी से ये नगमा, आवाज है मोहम्मद रफी की।

अभी आपने यहूदी फिल्म से ये नगमा सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। नगमा निगार थे शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन। और ये प्रोग्राम के आखिर में समाप्त कीजिए, तीसरा कौन फिल्म से ये नगमा। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए सुनिए डॉक्टर वारिस अहमद खां का लिखा ये फीचर, आगा हशर कश्मीरी।

0: हुजूर हैं जलवागर हमारे, खड़े हैं खुदाम गिर्द सारे, निसार होते हैं चांद तारे, है मेहर मस्तन नशी फलक पर।
1: जियाए इकबाल बादशाही, रहे यूं ही महसे ताबा माही, फरोग बख्शे यूं ही इलाही, है जैसे मेहरे मुबीन फलक पर।
2: बिरादरे अजीज, अगर ये सच है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और इंसान के दिल का हाल उसके कौल व फेल से जाना जाता है, तो तुम्हारा बर्ताव एक आईना है जिसमें सदाकत नजर आती है, और ये रोशनी, ये आराइश जो आज तुमने मेरे आने की खुशी में की है, तुम्हारे दिल की छुपी हुई मोहब्बत को रोशनी मिलाती है।
3: आका का इस तरह खुशनूदी जाहिर करना गुलाम की इज्जत अफजाई है, मगर बंदा तो ये समझता है कि खाना एक कमतर में है गर्दूं जनाब आया हुआ, आज है जर्रे के घर में आफताब आया हुआ।
4: आगा हश्र काश्मीरी अपने दौर के मकबूल तरीन ड्रामा निगार थे। उन्होंने अपने दौर के समाज की बड़ी कामयाब तस्वीर अपने ड्रामों में पेश की है। आगा हश्र काश्मीरी मशरकी अंदाज़े जिंदगी और अंदाज़े फिक्र को पसंद करते थे। उनके ख्यालात की ये छाप

0: के बेशतर ड्रामों में नजर आती है। उनका ड्रामा दिल की प्यास इसकी एक अहम मिसाल है।
1: आगा हश्र कश्मीरी ने उर्दू ड्रामे में फन के आला तरीन नमूने पेश किए हैं। सबसे पहला और अहम काम उन्होंने ये किया कि स्टेज को तसन्नों से आजाद किया। ड्रामे से शेर व शायरी, गाने और मौसीकी को कम करके इसमें नस्र को दाखिल करने की कोशिश की। मुकालमे सादा अल्फाज में लिखे और सादा ही अल्फाज के इस्तेमाल से मुकालमों में काफिये का आहंग पैदा करने की कोशिश की।
2: سبحان الله ما شاء الله سماحی شانی یستانی ایک طرف چاند کی نور افشانی اور دوسری طرف پانی کی روانی اور تیسری طرف گلہائے بستانی ان میں بھی کوئی تھانی کوئی آسمانی کوئی ارغوانی یہ پھول کس نے پھینکا
3: حضور شہزادی صاحبہ یہ پھول ہوا کا جھونکا آپ کے لیے تحفہ لایا ہے
4: نہیں ये किसी बेअदब बुलबुल ने गया
3: है। ये फूल इन फूलों की रंगत चुराने आया है।
5: इकबाल अब भी नहीं समझी, ये फूल तुम्हारे फूलों पर कुर्बान होने आया है।
6: हुजूर गजब कहर सितम।
5: कौन? शेरचंद?
6: खून खून इंसाफ का खून साफ का खून
5: है। क्या अब्बा जान शहीद हो गए?
2: क्या चाचा जान को किसी ने मार डाला?
6: भागिए भागिए आली जा भागिए, बादशाह सलामत के कत्ल का शुमा आप पर किया जाता है।
5: मुझ पर?
6: हाँ हाँ आप पर।
5: मुझ पर? क्या खून ने अपने खून का खून बहाया? क्या मैंने अपने बाप को कत्ल कराया?
7: यही है, बांध लो कातिल जल्लाद, बाप को कत्ल करा के यहाँ छुपने आया है और कत्ल भी मेरे घर में ताकि मुझ पर शुबा किया जाए।
5: चाचा जान ये आप क्या कहते हैं?
8: ये तेरे कलम की तहरीर जो कत्ल करने वाले बदमाशों की जेब से पाई गई, जिसमें बादशाह को कत्ल करने का तरीका वक्त जगह इनाम हर एक बात सुझाई गई है।
5: ये तहरीर झूठी है।
2: जो इसको सच कहता है वो बेवकूफ है।
7: चुप नादान, ये जाओ कैद में। झूठ और सच की परख रियाया के फैसले पर मौकूफ है।
9: हेलो जिंदावे,
7: इधर चलो।
2: ठहरो, क्या करते हो?
10: सरकार बेहोश हो गई।
11: हाय सरकार, मेरी सरकार।
5: वाह चल गया।
0: हश्र के फन की ये खसूसियत उनके दौर के पहले हिस्से में पूरी तरह नहीं मिलती। किरदारों की शख्सियत और मुकालमों में फनी मुनासबत का एहसास भी पहले दौर में कम नजर आता है, लेकिन उनकी ड्रामा निगारी के बाद के हिस्सों में ये खसूसियतें वाजे तौर पर नजर आती हैं और जमाने के साथ साथ उनकी फनी पुख्तगी में खूब खूब इजाफा हुआ है।
1: हश्र को प्लॉट को सलीके से तरतीब देने का ढंग खूब आता है। इन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि कहां पर जस्तागोई से काम लिया जाए, कहां मुहावरों का इस्तेमाल किया जाए और ड्रामे के किस हिस्से में तंजो मजा का उंसुर शामिल किया जाए, और यही वजह है कि उनके ड्रामे हर एतबार से सही, माकूल और कसे बंधे हुए होते हैं।
0: हश्र के किरदार बड़े सरकश और जांबाज होते हैं। परेशानी, दुख, तकलीफ और मुसीबतों से वो घबराते नहीं, बल्कि इन हादसात से उनके हौसले और भी बुलंद होते हैं और वो चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं। वो जमाने के सामने कभी घुटने नहीं टेकते, बल्कि जमाने की गर्दिशों का आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं और सख्त जुल्मो तकलीफ की हालत में भी चिरागे उम्मीद रोशन किए रहते हैं।
1: उनके ड्रामे खूबसूरत बला में तौफीक का किरदार मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। वो मजबूर और बेबस है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, दबता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि वो सही रास्ते पर है। वो निडर होकर गरजता है,
12: जिल्लत की पुतली, तुझे कौन औरत कहता है? औरत वो है जिसमें रहम हो, शर्म हो, सच्चाई हो, बावफाई हो, पारसाई हो, जिसने फरिश्तों की तीनत और हूर की अस्मत पाई हो। तू कभी औरत नहीं हो सकती। जिस तरह तूने मासूम शहजादी का दगा से हक छीना है, उसी तरह औरत के नाम पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है।
1: बात आगे बढ़ने पर वो कहता है,
12: दिल का जोश ऐसे डरावे से कहीं घटता नहीं, मोम से पंजाए फौलाद कहीं दबता नहीं। मत समझ दिल से मेरे जहर दगा निकलेगा, चीर कर देख शराफत से भरा निकलेगा। रोए रोए के जुबान पर ये सुखन जारी है, जान

0: प्यारी नहीं, दुनिया में वफा प्यारी है।
1: आपने सुना कितना बाहिम्मत और बाहौसला किरदार था तौफीक का। जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मौत उसके सामने है, बेबस है, मजबूर है, लेकिन बुजदिली नहीं दिखाता, जालिम से डरता नहीं, अपनी नेकी की कुव्वत से सर बुलंद किए खड़ा रहता है। और बजाय इसके कि वो शमसा की बात को मान ले और गुनाह की दलदल में फंसे, खुद शमसा को ही नेकी की राह की तरफ मुड़ने के लिए समझाता है।
2: इस ड्रामे के एक और किरदार ताहिरा को देखिए। ताहिरा तौफीक की बीवी है, वो औरत है, लेकिन अपने अंदर मर्द से कम हिम्मत नहीं रखती। वो भी तौफीक के साथ सारे मसाइल का सामना करती है, यहां तक कि तौफीक के मर जाने के बाद भी उसके हौसले पस्त नहीं होते, बल्कि वो तन्हा तमाम मुसीबतों को झेलती है और उन मुश्किलों से निकलने के लिए जतन करती रहती है।
3: अरे तू क्या, तमाम दुनिया के शैतान मिलकर आए तो भी सुहेल तो क्या, उसका एक नाखून भी यहाँ से ना ले जाने पाए।
2: फिर वो आगे कहती है,
3: अरे कोड़े क्या, तू मौत के शिकंजे में खिंचवा दे, सर तन से उड़ा दे, जला दे, मिटा दे, सर कटा दे, नहीं मुमकिन जबा उसका पता दे।
2: आगा हश से पहले जो ड्रामे लिखे जाते थे वो सिवाय बनावटी किस्सों के और कुछ नहीं होते थे, लेकिन हश्र ने एक बड़ा काम ये किया कि ड्रामे को जिंदगी से करीब कर दिया। उनके शुरू के ड्रामे तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाद के ड्रामे और खास तौर से आजादी के बाद के ड्रामे तो जिंदगी और समाज के मसाइल की भरपूर अक्कासी करते हैं।
1: मसाइल के ड्रामे के साथ हश्र ने एहसासात के ड्रामे भी लिखे हैं, जिनमें किरदार मोहब्बत, नफरत, एतमाद की कमी और आला मकसदियत जैसी चीजों में उलझा हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर उनके ड्रामे सिल्वर किंग और तुर्की हूर के किरदार अफजल और आरिफ दोनों एतमाद की कमी का शिकार हैं और अपनी बीवी की वफा पर शक करते हैं।
4: अब हम क्या करें?
5: सब्र और दुआ। परवीन, मैंने आर में खड़े होकर तुम्हारी और अफजल की गुफ्तगू का एक एक हर्फ सुना और हर हर्फ पर उसके लिए मेरी जबान से अफसोस और तुम्हारे लिए आंखों से आंसू टपक पड़े।
4: भाई मुनीर, माफ करना, अफजल के हुक्म के बगैर मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करने के सिवा और कोई गुफ्तगू नहीं कर सकती।
5: आह परवीन, तू इस कदर नाशनाज आदमी से डरती है? ये अफजल जो शादी से पहले तुझे तुझे जान देता था और अब परवाह भी नहीं करता, उसका इस कदर खौफ करती है? अफसोस, कैसी नेक बीवी और कैसा बुरा शौहर।
4: बस मुनीर, मेरे कानों को गुनहगार ना करो। मैं ऐसा कोई भी लफ्ज जिससे मेरी अफजल की हतक हो कभी नहीं सुन सकती। हमारे दर्द का दरमा, हमारे दुख का चारा है। भला है तो हमारा है, बुरा है तो हमारा है।
5: परवीन, मेरे अल्फाज जो हमदर्दी के जोश में मेरी जबान से निकल गए, अगर तुम्हारे रंज का वायस हुए हैं तो तुम्हें माफी मांगता हूँ।
4: बहन अपने आली हौसला भाई की माजरत का शुक्रिया अदा करती है।
5: ये क्या मुनीर और परवीन, मेरा पुराना रकीब और मेरी बीवी खूब मजन वाला के सामने शरय मलाल कर रहा है, फरार शेरी के आगे अर्ज हाल कर रहा है।
6: वाह मुनीर, वाह
5: भाई अफजल,
6: बहुत खूब।
5: मुझे माफ करना कि तुम्हारी गैर हाजिरी।
6: माफ मेरे दोस्त, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इजहार नदामत बेकार है। तुम जैसे शरीफों को हर एक औरत के बहकाने का इख्तियार है, जो कुछ हो रहा है होने दो, होने दो।
4: मेरे सरताज, ये क्या कहते हो? मुनीर तो मुझसे इस तरह बातें कर रहा था जिस तरह एक भाई बहन से गुफ्तगू।
6: मैं तुम्हारे भाई को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, आज से नहीं बल्कि मुद्दतों से पहचानता
5: हूँ। अफजल, पहले बात को तोलो फिर बोलो, तुम इन लफ्जों से मेरी शराफत पर हमला कर रहे हो।
6: शराफत? तेरे जैसा पाजी और शराफत। एक वक्त था जबकि तुम, मैं और असद, ये तीन शख्स इसकी पसंद को जीतने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैंने फतह पाई और तुम दोनों ने शिकस्त खाई। अब उस शिकस्त का बदला इस तरह लेना चाहता है कि मेरी घर हाजिरी में मेरी बीवी को मेरी तरफ से बहका।
5: शराब ने तुम्हें आधा पागल तो पहले ही बना रखा था, अब पूरा पागल साबित करना चाहती है।
6: बस हरामजादे कमीने, बगैर एक लफ्ज बोले यहां से चला जाओ।
5: वरना क्या होगा?
6: वरना इसका जवाब मेरी लातें होंगी।
5: तो इसका जवाब मेरे घूंसे देंगे।
6: इसका जवाब ये पिस्तौल देगा। जा जा पागल कुत्ते, किस को डराता है? ये पिस्तौल अभी तुझे फंसा चुका है।

0: आगा हश्र कश्मीरी ने अपने ड्रामों में जो किरदार पेश किए हैं वो चाहे समाज के जिस तबके से ताल्लुक रखने वाले हों मगर अपने अंदर भरपूर खसूसियतें रखते हैं। सफेद खून में खाकान अपनी साफ गो बेटी को आख करके अपनी सारी जायदाद दो खुशामद परस्त और रियाकार बेटियों में तकसीम कर देते हैं और बाद में जब दोनों उनके साथ गलत सुलूक करती हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछताते हैं। इस पछतावे के शदीद जज्बे को खाकान के किरदार में बहुत ही खूबी से ढाला गया है। अपनी बेटियों से धोखा खाने के बाद वो शदीद नफरत के लहजे में उनसे मुखातिब होते हैं।
1: जबरदस्ती अस्तग़फिरुल्लाह, लाओ लाओ हमारे घोड़े लाओ, कुल खादमाने दरगाह को बुलाओ, जा ए नाशुदनी दूर हो, मैंने तुझे आग किया, तू मेरा खून नहीं बल्कि वो जंग है जो लोहे के दिल में बैठकर उसके जिगर को काटता है, तू मेरी औलाद नहीं बल्कि वो सांप है जो सबसे पहले अपने पालने वाले को काटता है, क्या नमक हलालों को जहर खिला दूं, गरीबों को सजा दूं, क्यों किस लिए, क्या इन जर्रो जवाहर के लिए जो भूख के वक्त खाकर तेरा पेट नहीं भर सकते, क्या इन जरी के चीथड़ों के लिए जो बाद मरने के तेरे कफन के काम भी नहीं आ सकते।
0: इसके बाद के मुकालमों को देखिए।
1: हाय जरा, हाय जरा, जरा से कसूर पर, सिर्फ इतने ही कसूर पर कि वो सच बात क्यों बोली, मुझ कमबख्त ने रास्तबाज जरा का हक छीन लिया और इस नाखलफ और झूठ की पुतली पर कुर्बान कर डाला। ओ बारे ताला, अगर तेरा यही इरादा है कि ये कमबख्त फूले फले तो अपने बंदे पर रहम कर और इस मगरूर मरूना को कारों की तरह इस मकान में गाड़ दे, इसकी तसल्ली बर्बाद कर दे, इसके सितम को उजाड़ दे, अगर औलाद भी हो तो खौफनाक दरिंदों की तरह जो अपने पंजों से अपनी औलाद को मार खाते हैं, इसी तरह इसको सताए जलाए, ये अपनी बेरहम आंखों से खून का दरिया बहाए।
0: हश्र ने अपने ड्रामों में तवायफ की जिंदगी और उसके जज्बात और एहसासात की भी खूबसूरत अक्कासी की है। आंख का नशा में कामलता के किरदार में तवायफ की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है।
2: एक जगह पर कामलता झूठे और चालबाज मर्दों के खिलाफ जहर उगलते हुए कितनी खूंखार नजर आ रही है, वो कहती है,
3: ये कामी प्रकाश कितने झूठे और निर्लज्ज हैं, अखबारों में, लेक्चरों में, समाज में, सिनेमा में, थिएटर में, सब जगह हम वेश्याओं को बाजार की घृणित कुतिया कहते हैं और फिर एक झूठी मुस्कुराहट के लिए इस कुतिया को हृदयेश्वरी और सुंदरी कहकर अपना थूका हुआ आग चाटते हैं, ज्यों ज्यों ग्लास भरता जाता है बोतल खाली होती जाती है, जुगल ठहर जा, मैं इस बोतल की तरह तेरे घर को भी धन और सुख से खाली कर दूंगी।
2: आगा हश्र का ख्याल है कि तवायफ सिर्फ तवायफ नहीं होती बल्कि एक औरत भी होती है जो उसके अंदर कहीं पर छुपी होती है, एक तवायफ सिर्फ बेहयाई और जलालत की पुतली नहीं होती बल्कि उसके अंदर मोहब्बत, नेकी और निस्वानियत का भी जज्बा होता है जो दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने ड्रामे बिलवा मंगल में तवायफ के एक ऐसे ही किरदार को पेश किया है जिसे सुन या देखकर उससे नफरत नहीं बल्कि उसके लिए प्यार और हमदर्दी का जज्बा उभरता है, क्योंकि वो उन औरतों और मर्दों से कहीं ज्यादा अजीम नजर आती है जिन्हें समाज में ऊंचा मर्तबा हासिल होता है। तवायफ चिंतामणि अपने जाल में फंसे हुए बिलवा से फायदा नहीं उठाती बल्कि उसे समझा बुझाकर घर भेजने की कोशिश करती है।
3: बिलवा मंगल, सोचो और इंसाफ करो, एक हिंदू अबला जो खाविंद के घर को अपना मंदिर और खाविंद की मोहब्बत को अपनी पूजा और खाविंद की खिदमत करते करते मर जाना अपनी मुक्ति समझती है, ऐसी मोहब्बत वाली पतिव्रता बीवी को अंधेरे घर में रोते बिलबिलाते छोड़कर उस कुत्ते की तरह जो लजीज नेमते छोड़कर एक हड्डी की तरफ दौड़ता है, अंधेरी रातों में हम रंडियों के पीछे चोर और डाकू की तरह फटकते फिरना क्या बुरा काम नहीं, क्या खाविंद का बीवी पर हक है और बीवी का खाविंद पर कोई हक नहीं।
2: आपने सुना, तवायफ होकर भी चिंतामणि अपने अंदर कैसा दर्दमंद दिल रखती है। आगा हश्र कश्मीरी मजहबी ख्यालात के

0: आदमी थे। चुनाचे उन्होंने अपने ड्रामे में भी ऐसे किरदार पेश किए हैं जो अपने मजहब पर ऐसे अटल हैं जैसे कोई चट्टान।
1: कौन है बेअदब?
2: तेरी मौत ना फरजाम, क्या नहीं सुना रुस्तम जंग का नाम?
1: कौन? रुस्तम जंग?
2: हाँ, क्यों, क्या ख्याल आया जो बदन थर्राया?
1: तो क्या मेरी जान लेगा?
2: अगर एक बात मेरे जी में ना आती तो तेरी नींद रोजे हल तक न खुलने पाती। वो बुज़दिल है जो तोतों पे वार करते हैं, जो शेर हैं वो जगाकर शिकार करते हैं।
1: हैरत, ताज्जुब, रहम, दुश्मन पर रहम।
2: हैरत का कौन सा मुकाम है? रहम तो बहादुर का एक अदना काम है। ईमान यही, आन यही, शान यही है। दुनिया में जवां मर्द की पहचान यही है।
1: हैं? जब कत्ल करना ना मंजूर था तो फिर यहाँ आना क्या जरूर था?
2: मैं जो तलवार या छुरी से मारने नहीं आया था, बल्कि तेरे हल्क में नसीहत का जहर उतारने आया था।
1: मगर नसीहत से मुल्क दौलत हुसूल हो तो एक बार नहीं बल्कि हजार बार कबूल हो। वरना जब तक रहे इंसानों में मक्कार रहे, उसी की इज्जत है जो इस दहर में जरदार रहे।
2: दानाइयत से है सनोचाल से नहीं, जरदार दिल से होता है कुछ माल से नहीं।
1: खैर, जब माने ही नहीं हम तो मनाने से फायदा, सीखते ही नहीं हम तो सिखाने से फायदा। जान मेरी तुमने बख्शी है, जिक्र इसका अब करो। मांगो जो मांगना है, जो चाहो तलब करो।
2: मैं तुझसे दो चीजें मांगता हूँ, जुल्म से इंसाफ, रहम और इंसाफ।
1: इन फूलों की इस बाग में बुबास नहीं, इन दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं।
0: यहूदी की लड़की में उन्होंने अजरा नाम के एक ऐसे किरदार को पेश किया है जिसमें मजहबियत कूट कूट कर भरी हुई है और खुदा और मजहब पर पुख्ता यकीन की वजह से उसका दिल निडर है और हौसला बुलंद है।
3: कसम खाओ और साफ साफ बताओ, तुम नजर आती हो अक्सर मुझको घबराए हुए, फिक्र के बादल है तुम पर इस कदर छाए हुए।
4: प्यारी, मैंने भी तुम्हें इसीलिए यहाँ आने की तकलीफ दी है कि खुले लफ्जों में अपनी हकीकत आश्कारा कर दूं। मेरे होठों पे शहद और जहर कातिल था छुपा दिल में, पिनौला रूई में हो जिस तरह यूथी दगा दिल में, हकीकत को नजाहिर आज तक होने दिया मैंने। मेरी जान, माफ करना तुम कहे तुमको ठगा मैं।
3: ओ खुदा, क्या तुमने मुझे ठगा, धोखा दिया, मुझे दामी मोहब्बत में फंसाया?
4: हाँ प्यारी, हकीकत यह है, मेरा गुमान अलग है, मेरा यकीन अलग है, तेरा दीन अलग और मेरा दीन अलग।
3: तो क्या तुम हमारे हम मजहब नहीं हो?
4: नहीं, मैं तुम्हारे दुश्मनों की डाली हुई बुनियाद हूँ, रोमन खून और रोमन बाप की औलाद हूँ।
3: तुम यहूदी नहीं हो?
4: नहीं।
3: तो तुम यहूदी बनने को किसने कहा?
4: तुम्हारी दिल फरेब सूरत ने।
3: तुम एक यहूदी लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत किसने दिलाई?
4: तुम्हारी मोहब्बत
3: नूर मीनार, शरबत में कफे मार, जहरीला सांप और गले का हार, क्यों उलझता अपना दामन गरना फंसती फूल में, मुझको क्या मालूम था कांटा छुपा है फूल में।
4: धोखा नहीं प्यारी राहील, धोखा तो उस वक्त होता जब मैं तुम्हारे खूबसूरत होने से इनकार कर देता या तुम्हें छोड़कर किसी और को प्यार करता। यहूदी हूं कि रोमन हूं, मैं नूरी हूं कि नारी हूं, कोई हूं, कुछ भी हूं, पर तेरी सूरत का पुजारी हूं।
3: मगर अब तुम इस सूरत की तरफ देखने का कोई हक नहीं रखते।
4: क्यों, आखिर किस वजह से इनकार है, किस लिए जी बेजार है?
3: इस दिल पर मेरा कब्जा है, लेकिन इस हाथ पर मेरे बाप का इख्तियार है।
4: मगर तुम्हारा बाप तो मुतासिब यहूदी है, क्यों कर अपनी लड़की का हाथ एक रोमन के हाथ में देने को तैयार होगा? ऐसी मोहब्बत और ऐसी शादी का कैसे रवादार होगा?
3: फिर मैं क्या कर सकती हूँ?
4: प्यारी राहील, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। मेरी जान के लिए अपने बाप को छोड़कर मेरे साथ निकल चलो, हम दूसरे शहर में पहुंच कर निकाह पढ़ा लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मरीज इश्क की इस तरह ईद हो जाए, तमाम उम्र को राहत नसीब हो जाए।

0: पंजे से बचाना चाहते हो?
1: जी, दिल और ईमान से।
0: तो इसे इजाजत दो कि ये अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब में शामिल हो और इसके साथ तुम भी हमारे दीन में दाखिल हो।
2: हरगिज नहीं, अपनी बच्ची के बचाने को और सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर अपना प्यारा मजहब छोड़ने से लाचार हूँ।
0: कम समझ, अपनी घर जान है तो सब कुछ है,
2: अपना ईमान है तो सब कुछ है,
0: अपना इम्कान है तो सब कुछ है,
2: अपना यजदान है तो सब कुछ।
0: अजरा अजरा, ये मेरी मेहरबानी है कि मैं इस वक्त तेरी जान बचाने को तैयार हूं, वरना तू जानता है कि मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूं।
2: और ये उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया है, तुम्हारा घर बार बीवी बच्चे सब कुछ तुमसे छीन कर तुम्हें इस दुनिया में तन्हा जलने और कुड़ने के लिए छोड़ दिया है।
0: मेरी पिछली जिंदगी के वाकयात तू कैसे जानता है?
2: बेदर्द रामन, अदराज से नहीं, तुझे 16 बरस से पहचानता है।
0: मैंने तेरी कौम के साथ जो सुलूक किया वो उसकी मुस्तहब थी, मगर इस वक्त मेरी मेहरबानियों को देख तो मैं तुझे सरासर मुजरिम पाता हूँ और फिर भी तेरी जान बचाता हूँ।
2: मुझे अब जान की परवाह नहीं, अलबत्ता यह आरजू है कि मरने से पहले एक पुरफन कातिल रोमन का सारा कस्बा निकाल दूं, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर छाले डाल दूं, मैं हंसता और कलेजा थाम कर रोता हुआ तू हो। मेरी आंखों में नफरत और तेरी आंखों में आंसू हो।
0: मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूँ।
2: मैं तुझे आज से 16 बरस पेशतर का वाकया याद दिलाता हूँ, जब शाहीनों के हुक्म से तमाम रोम हमें हर तरफ आग भड़की थी। उस वक्त तेरे घर में एक खूबसूरत बीवी और बीवी की गोद में 6 महीने की लड़की थी।
0: इस बात के याद दिलाने से तेरी क्या मुराद?
2: मैं पूछता हूँ कि इन दोनों के आग में चलने का वाकया तो तुझे खूब याद है?
3: मैं उस मनहूस दिन को जब मौत ने मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया कभी नहीं भूल सकता। अभी तक गम से कुड़ता है, अभी तक याद करता है, मेरा टूटा हुआ दिल लाश तक फरियाद करता है।
2: तुम्हारी बीवी जरूर इस आग में जलकर मर गई, मगर बच्ची
4: तो क्या वो जिंदा है? उसे किसने बचाया?
2: खुदा के कुदरत ने।
4: किसने आग से निकाला?
2: एक रहम दिल यहूदी के हाथ में।
4: वो कौन है?
2: नहीं बता सकता।
4: उसका नाम?
2: नहीं बता सकता।
4: उसका ठिकाना?
2: नहीं बता सकता।
4: नहीं नहीं अजरा, तुझे बताना होगा।
2: हरगिज नहीं, ये मेरा राज है जो जिंदगी का तमसाज है।
4: नहीं अजरा, बता दे अजरा, मुझ पर रहम कर।
2: रहम, आज पहला रोज है कि रहम का लफ्ज तुम्हारी जबान पर आया। अब तुम्हें मालूम हुआ कि रहम की जरूरत मजलूम यहूदियों को नहीं, जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। हाँ जाओ जाओ, रहम मांग कर लाओ अपनी कौम से, अपने बादशाह से। क्या किया है उम्र भर जो रहम की सौगात आए, बीज ही बोया नहीं तो फल कहां से हाथ आए।
4: बता दे अजरा, बता दे, मैं तुझसे अपने पिछले कसूरों की माफी चाहता हूँ।
2: क्यों? कैसा झटका लगा जब अपनी मुसीबत आई तो कितनी जल्दी गर्दन झुकाई। जब तुमने तरस खाने से इनकार किया था, अब मैं रहम करने से इनकार करता हूँ।
0: तो क्या इनकार?
2: 1000 बार
0: नहीं बताएगा?
2: नहीं
0: नहीं रहम करेगा?
2: नहीं नहीं नहीं।
0: अच्छा, नहीं तो ना सही, अब मैं भी जबरदस्ती तेरे सीने से ये राज निकलवाऊंगा, तेरी एक एक बोटी का कीमा बनवाकर अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। जाओ ले जाओ, जला दो, फूंक दो, झगड़ा ही सारा पाक कर डालो, सजर के साथ ही इसका समर भी खाक कर डालो, रखो इसे भी वही जिस जगह पे आप रहे, अभी जमीन पर बेटी रहे ना बाप रहे।

0: राहिल, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए तुमसे कोई दरख्वास्त करे तो क्या तुम मंजूर करोगी?
1: दिलो जान से।
0: अजरा, तुम अपनी लड़की को मौत के

0: ले जाओ, इनको उठाकर तेल के खौलते हुए कढ़ाओ में डाल दो।
1: चंद मिनट बता राहील, तो दुनिया और दीन दोनों में से किस चीज को पसंद करती है बेटा?
2: अब्बा जान,
1: बेटा
2: दीन को।
1: शाबाश शाबाश मेरी नूरुलैन, शाबाश। ये आग तेरे वास्ते बागे खलील हो, ये मौज नार तेरे लिए मौज नील हो।
3: आगा हश्र कश्मीरी

कि वो सिर्फ मसाइल के ही नहीं बल्कि एहसासात और नफ्सियात के भी ड्रामा निगार हैं, इसलिए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और आने वाले दिनों में भी जिंदा रहेंगे और उनके ड्रामे हर अहद में दुनिया के लोगों के लिए एक सबक की हैसियत रखेंगे।

अभी आपने डॉक्टर वारिस अहमद ख़ान का तहरीर करदा ये फीचर सुना, आगा हशर कश्मीरी। सदाकार थे सुरेंद्र सेठी और सुचित्रा गुप्ता। पेशकश थी प्रेम वोहरा की और माविन थे सरफराज अहमद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। फिल्मी मौसीकी समझ लीजिए, इस प्रोग्राम में समाप्त कीजिए कुछ फिल्मी नगमे।

हरण को आपने फिल्म रोजा में सुना, और लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर, उदित नारायण और अभिजीत की आवाज़ों में फिल्म दिल लगी से ये नगमा।

कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया ये नगमा आपने सुना फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। नगमा निगार थे राहत इंदौरी, मौसीकार अनु मलिक। और लीजिए आप सुनिए SP बाला सुब्रमण्यम और उदित नारायण की आवाज़ों में ये नगमा। फिल्म है हमसे है मुकाबला।

और ये पेश है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से नगमा, आवाज है अलका याग्निक की। नगमा निगार हैं समीर और मुसिकार नदीम श्रवण।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आपने ये नगमा सुना। फिल्म गुलामी से। और अब सुनिए बम्बई का बाबू फिल्म से ये नगमा। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

ये नाम है फिल्म सोल्जर से, आवाजें हैं जसविंदर निरोला और सोनू निगम की।

और ये प्रोग्राम के आखिर में समाप्त कीजिए, फिर रुदाली का ये नगमा आवाज है भूपेन हजारिका की।

इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के ज़रिए मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1,300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को दीगर मुकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वरसे का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को बहुत भारत के इत्तेहाद, आज़मत और इजतमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन ने आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अंडमान और निकोबार जजायर की राजधानी श्री विजयपुरम में फ्लैग पॉइंट पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में वंदे मातरम से मुतालिक तिरंगा कंसर्ट में भी शिरकत की। अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी से वाबस्ता अंडमान और निकोबार जजायर की शानदार तारीख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वही सरजमीन है जहां मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क की आज़ादी के लिए शदीद अज़ियत और नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात बर्दाश्त की। नायब सदर जमहूरिया अंडमान व निकोबार जजायर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जांबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौआबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के

की जगह मोदी सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कानून मुरतब किए हैं वो 3 अहम सुतूनों टेक्नोलॉजी, वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गोरीमेटू में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही। जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मल्लापुरम में गैरकानूनी धमाकाखेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मजकूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाकाखेज मादों को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले NIA ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में आज सुबह सरहिंद GT रोड पर एक कार से टकरा जाने के नतीजे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये कांवड़िए उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा वापस जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा अगले चंद रोज तक पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से मुअत्तल रहेगी। हालिया बारिश, यात्रा के रास्ते पर बहाली के काम और खराब मौसम की पेशगोई के तनाजुर में ये यात्रा आरजी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात किए जा रहे हैं। पुंछ के साथ जम्मू रियासी को जोड़ने वाली एक क्लीदी नई लाइन समेत रेलवे के अहम प्रोजेक्टों के लिए मुतालिका हतमी सर्वे की मंजूरी दी गई है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 190 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के लिए फील्ड सर्वे का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में, जलका और भद्रक में, बैतरनी और सलंदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने के सबब सैलाब का खतरा पैदा हो गया है जबकि सैलाब से मुतासर बहुत से इलाकों के जेरे आब होने का अंदेशा है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन बनी हुई है। एक और शख्स की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 99 हो गई है जबकि 1,47,000 से ज्यादा अफराद अब भी मुतासिर हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निपटने की गरज से शंघाई के 2 हवाई अड्डों ने 1,300 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3,00,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस आग में कई मकान तबाह हो गए और 20,000 से ज्यादा अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी हान चियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर यह बावकार खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ ही आसाम की इस खिलाड़ी ने अपना पहला BWF टाइटल जीता। खास खबरें एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए मुकर्रर वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाकाखेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है।

0: रहा है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात खत्म होती हैं। रात 9 बजकर
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी में आज नमस्कार अक्षत चावला का। साथियों, आज रविवार के दिन आपकी पसंद कार्यक्रम, जिसमें हम सुनवाएंगे आपको आपके पसंदीदा गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आज हम गीत सुनेंगे उस प्रयोगवादी संगीतकार का, जिसने न जाने कहां कहां से संगीत ढूंढ लिया। शायद वो इस दुनिया में इसीलिए आए कि वो इस बात को सिद्ध कर सकें कि प्रकृति के कण कण में है संगीत, बस ढूंढने वाला चाहिए। उन्होंने अपने गीतों में किसी ग्लास की खनकती आवाज से चम्मच लगाकर एक आवाज निकाल ली, मेज पर खाली बोतल से और न जाने किन किन तरीकों से आवाज निकाली, संगीत निकाला जो लोगों के दिलों में बसा और लोगों ने उसे सराहा भी। सुनेंगे उन्हीं का ही आज पहला गीत। फरमाइश की है छत्तीसगढ़ बालोद से कबीर रेडियो श्रोता के संघ के सदस्य अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डोली, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर। साथ ही फरमाइश मिली है हमें गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहर। साथ ही भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेल लाल वर्मा ने अपने गीत की फरमाइश भेजी है। मध्य प्रदेश में जिला खरगोन से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली ने भी हमें पत्र लिखा है। साथ ही नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी ने भी गीत की फरमाइश की है। गांव बांडी जिला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, प्रियांश, योगेश, रजत और गरिमा बागड़िया। उसके बाद पत्र जो मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से, नाम है संजय नमन और अपार ढिंगिया। साथ ही जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और जयपाल यादव। हनुमानगढ़ राजस्थान गांव नैयावाली से वेद और अलका मिठा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

साथियों, कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है बीकानेर से अभिनव यादव, बेंगलोर से आद्या और जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी। साथी पत्र हमें मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा। श्रीगंगानगर से पत्र लिखा है विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशना और शगुन बारासा ने। और दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी। साथ ही पत्र मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेरा जहां का, हरिद्वार उत्तराखंड से। वीरमगाम से पत्र लिखने वाले हैं राकेश कुमार भावसर, भावेश, सन्नी, अजीत, प्रमिला और उनके परिवार के सदस्य। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंस लाल बनवारी, बनवारी लाल, गोपी लाल, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, इन्होंने साथ ही उनके सदस्य परिवार के, मीनाक्षी मलखट,

पत्र लिखा है इन्होंने राजश्री नगर 58 NP से। अगला गीत जो अब हम सुनेंगे उसके लिए पत्र राजस्थान से ही आया है, सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता और हिमानी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव का। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव। मध्य प्रदेश आकली दीवान से पत्र लिखा है रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा, काजल, मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी ने। साथ ही जाखोद राजस्थान से हमें व्हाट्सएप पर संदेश मिला है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा का। साथ ही सोलापुर महाराष्ट्र से लिखा है हमें गणेश ढोंगे, आम्रपाली और आरव ने। फरमाइश मिली है गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। गांव फ्रांसी जिला हिसार से भी मिला है हमें संदेश राजकुमार डूडी, सौरभ और प्रमोद डूडी का। अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है रिजवान खान, आयशा, अनस और रेहान ने। गांव साबुआना फाजिलका से हमें फरमाइश भेजी है करण कंबोज, चरण, रियांश कंबोज और परीश कंबोज ने। गीत की फरमाइश हमें भेजी है काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी और वैष्णवी हर्षल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: तो साथियों, अगले गीत के लिए जो फरमाइश है उसमें नाम है गांव गमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ज्योति, शिवम सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु, ईवा। और अगले गीत के लिए जो पंजाब से बठिंडा से हमें फरमाइश मिली है, गांव का नाम है कल्याण मलका। वहाँ से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर ने फरमाइश की है। राजकोट से जैमिन जैन, हेतल और कृष्णा जैन। साथ ही भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, विमल, आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार के सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और जयवीर शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज का भी हमें पत्र मिला है। अलीका डबवली से रूप सिंह लखोत्रा, कर्मजीत, सरबजीत, रानी, सोनू और रजनी। फिल्म निकाह, माफ कीजिएगा, फादुल शहर से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ ने भी गीत की फरमाइश की है। अनूप शहर भाद्रा से गजानन सारस्वत, ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदन, महावीर, ममता, मीतू, कीनू और उनके परिवार के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में अपने पसंद का गीत सुनवाने की फरमाइश की है। मानसा पंजाब से जगदीश राय, अंजना रानी, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग ने भी फरमाइश की है। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु

और मुकेश जगताप, महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ में इताला से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल सेसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने गीत की फरमाइश की है। अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत, विक्रमजीत ने फरमाइश भेजी है बठिंडा आदर्श नगर से, और गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी, जिगर और जानवी, आपकी फरमाइश भी हमें प्राप्त हो चुकी है। गांव निमनाबाद जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर की फरमाइश भी हम शामिल कर रहे हैं। साथ ही गांव कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव, कुंदन और लीलाधर स्वामी की भी फरमाइश हमें मिल चुकी है। ग्राम पंचायत बठेना, पाटना जिला छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र और सूरज साथी कुशल वर्मा की हमें फरमाइश मिल चुकी है इस गीत के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगले गीत के लिए जो फरमाइश मिली है साथियों, वो है गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। नोहर से जावेद खां, अरमान, इमरान, सीमा बानो, विनोद और उनके परिवार के साथी। साथ ही मेरठ कैंट से फरमाइश मिली है दिग्दर्शन और कविता गोड़ की, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। इन्होंने फरमाइश भेजी है कुम्हार हैड़ा सहारनपुर से, जामनिया जिला गाजीपुर से। लिखा है हमें सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने। अगले गीत को पसंद किया है नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती जानवी और वैष्णवी हर्षल रंबाड़े ने। साथ ही फरमाइश की है डबवली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी और तानिया नारंग ने। राहुल पाल, ज्योति, अंजना और हरिमोहन पाल, साथ ही लक्ष्य ने फरमाइश भेजी है गोपी खिरिया, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के नरगोड़ा से फरमाइश की है

कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। साथ ही हिसार के गांव नलोई से सज्जन जांगड़ा, राजबाला की कार्तिक और वेदांश जांगड़ा ने फरमाइश की है। साथ ही मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत के साथ सादिया, इन्होंने फरमाइश भेजी है दादा बाबू रोड झारखंड से, गिरडीह, ये यहाँ के रहने वाले हैं। और अब सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें जलालाबाद वेस्ट से संदेश भेजा है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। साथ ही गीत सुनना चाह रहे हैं संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, हक डाबर, जियाउल डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, साथ ही राजेंद्र कटारे। गांव चांदबाजा फरीदकोट पंजाब से सुनना चाहते हैं अंग्रेज सिंह, गेजा गुरमत, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत, करमजीत, चरणजीत कौर, नवकिरत, गुरसिरत और गुरप्रताप सिंह। साथ ही गांव दौलेवाला मोगा पंजाब से सुनना चाह रहे हैं स्वर्ण सिंह। इसके बाद अगली फरमाइश है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा की। गुजरात गांधीनगर से भी फरमाइश मिली है सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा की। सनावत से सुनना चाह रहे हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश, गुरु नूरू मीना, इरफान मीना और कासिम मीना। गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से सुनना चाह रहे हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, फराज शेख, गुलफराज और मुस्कान। आइए सुनते हैं आपकी मिलीजुली फरमाइश पर प्रेम रोग का ये गीत।

साथियों, अगले गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है गांव बनवाला हनवंता जिला फाजिल्का से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यसिका, विदा देवी और उनके और मायल परिवार के सदस्यों से। नेपा नगर पद्मा टॉकीज मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह ने। गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से एक और हमें फरमाइश मिली है, नाम है खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव की। मजनू का टीला से हमें संदेश मिला है कमल, बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का। तेलंगाना निजामाबाद से भी पत्र लिखा है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख ने। जोधपुर से सुनना चाह रहे हैं ये गीत रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी चौहान। गांव गोविंदगढ़ माजीवाला करणपुर से सुनना चाह रहे हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, स्माइल और पवन गुज्जर। आइए सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर ये गीत फिल्म किस्मत कनेक्शन से।

साथियों, कार्यक्रम में हम ईमेल और पत्र भी शामिल करते हैं, साथ ही व्हाट्सएप पर जो संदेश मिलते हैं उनके भी नाम शामिल होते हैं। आइए अब जो हमें ईमेल मिले हैं उसमें से भी कुछ नाम सुनते हैं। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हमें ईमेल मिला है। निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान बाबू का। साथ ही व्हाट्सएप पर संदेश मिला है फाजिल्का से, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु, सरवन, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु, अलका वर्मा, इन सब का। आप सुनना चाह रहे हैं सावन महीने पर कोई गीत, वही सुनवाएंगे। साथ ही ईमेल मिला है अब्दुल गफ्फार का, नागचुन खंडवा से। साथी हैं डावर खुशनसीब। और काल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपी साहनी और अफजल मलिक सुनना चाह रहे हैं इसी कार्यक्रम में एक गीत। व्हाट्सएप पर जो बाकी संदेश मिले हैं उनमें नाम है गोविंदगढ़ माजीवाला करणपुर से, राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला, जीनू, मनु, स्माइल और उनके साथी। अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह। लखुवाली हेड भंवरलाल से, लखवाली हेड से भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम और उनके साथी। गांव हीरावाली पंजाब से सुनना चाह रहे हैं हजारीलाल, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मडावरा और राजू मडावरा। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से सुनना चाहते हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी। साथ ही चौटाला हरियाणा से फरमाइश मिली है हमें दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा की। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: करूँ।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ, जिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियो 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉर्न सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं।

लीजिए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की, 6:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी व राजस्थानी में जो हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल और दोस्तों 8 आप सुनेंगे फिल्मी संगीत यानी कि एक ही फिल्म के गीत, और 8:30 से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। ये समाचार पहले हिंदी में होंगे उसके बाद अंग्रेजी में, और 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, 9:30 पे आप सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, और शुतो रात्रि 10 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार के संगीत सभा हमारे दिल्ली के अंदर से। रात्रि 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। हमारी आज की सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

मीडियम 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम सराय की

0: रस्ते नाल लूणी क्षेत्र दी हिक्का प्रमुख नदी है। ते इयो कली नदी सिंचाई दे पानी दा एक जरूरी स्रोत दा काम करेंदी है। लूणी एक मौसमी नदी है ते हिंदा अपवा खास तौर तू अरावली श्रेणी दी दक्षिण पश्चिम ढलाना तू थींदे। लूणी नदी दी सहायक नदियां मिठड़ी लीलड़ी जवाई सूकड़ी बांडी खारी ते जोजड़ी खास नदियां हैं। सज्जे पासे तू मिलन वाली हिक्का सहायक जोजड़ी नदी है। लूणी नदी को भारत दी सब तू उथली नदी भी आखदे न। नदी लगभग 550 मीटर दी ऊंचाई ते पश्चिमी अरावली रेंज दी पुष्कर घाटी विच अजमेर दे कोलू शुरू थींदी है। इयो बिंदु ते नदी को सागरमती दे नां तो भी सड़िया वेंदे। नदी इत्थों राजस्थान दे मारवाड़ क्षेत्र दी पहाड़ियां ते मैदानां विचों दक्षिण पश्चिम वाली दिशा विच वांदी है। लूणी पश्चिम राजस्थान दी सब तो खास नदी है। हिंदे विच बजरी भरपूर है। बजरी घर बनावन दे काम आंदी है। लूणी नदी दा साफ पानी गंदा क्यों थींदा पे? क्योंकि हिंदे आसपास कपड़े रंगन दे कारखाने हैं जिन्हां तू निकलन वाला गंदा पानी लूणी नदी विच आ मिलदे, जे कारण नदी दा पानी गंदा थींदा पे। हर साल लूणी विच पाली जिले दी उद्योगिक कारखानिया ने रसायनिक पानी छोड़ दिते। कैमिकल वाला बदबूदार काले रंग दा विशैला पानी धुंधाड़ा दी जड़ां दे तलू बाड़मेर जिले दी हद्दां विच वधदा पे। ए विशैला पानी किसानां दी उपजाऊ जमीन को बंजर करेंदा पे। लूणी नदी दे सोने ते प्रकृतिक नज़ारियां को देखण दा मजा मानसून विच आंदे। इत्थां मार्च दे महीने हर साल थार महोत्सव भी मनाया वेंदे। राजस्थान दे सीमावर्ती जिले बाड़मेर दी कला संस्कृति ते पर्यटन को अगू वधावण वास्ते इत्थां त्रै दिहाड़े दा थार महोत्सव दा आयोजन कीता वेंदे। ही महोत्सव विच देसी ते विदेशी पर्यटकां दा जमावड़ा लगदे। लूणी नदी दे हर साल भव्य आरती दा भी आयोजन कीता वेंदे। 1100 दिव्या नाल ए आरती कीती वेंदी है। लूणी दे किनारे मल्ली नाथ जी लोक देवता दा मंदर है। मानसून विच लूणी दी पूजा कीती वेंदी है। राजस्थान दे मशहूर पशु मेलियां विच बाड़मेर दे मल्ली नाथ पशु मेले दी विधिवत शुरुआत कीती वेंदी है। 600 साल पुराने ही मेले विच प्रदेश दे नाल दूजे राज्यां दे पशु पालक भी हिस्सा घिंदे न। लूणी दी कुछ खास उपलब्धियां जिवें सरदार समंद परियोजना लूणी नदी दे किनारे है। राजस्थान दी लूणी घाटी विच उप घाटियां दी भी भरमार है। लूणी नदी दा बहाव बहु बारिश वाले क्षेत्रां तों घट बारिश वाले मरु प्रदेश दे पासे है। पुष्कर दी पहाड़ियां उत्ते भारी बारिश पौवण करके लूणी दे कोल बलोत्रा दे आसे पासे दा धरातल झिक्का है। हुणे तुसां सुनदे पए हवे नीलम बजाज दी वार्ता। आओ हुण सुनो सिराइकी गीत संगीत।
1: ए हिन आबिदा परवीन।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सराय की। मीडियम 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। ये समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद राजस्थानी में।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली को रवाना किया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रकृति संरक्षण में आदिवासियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। पशुओं की नस्लों में सुधार और संवर्धन के लिए प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म पाली के सांडेराव में बनाया।

0: जाएगा। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की बारिश का दौर जारी, आज 19 जिलों में बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि तिरंगा केवल राष्ट्रध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान शान और करोड़ों देशवासियों की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आज जनव्यापी अभियान का रूप ले चुका है। जयपुर में अभियान के तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर विविधता में एकता और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया।
1: तीन रंगों में, केसरिया, सफेद और हरा, तीन रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का, वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया, जिसका अर्थ था प्रगति और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवन प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा जन जन के अभियान के रूप में नई पीढ़ी में राष्ट्र भावना को मजबूत करने का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगे का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर फहराया गया तिरंगा राजस्थान में तैयार हुआ था। श्री शर्मा ने कहा कि इस अभियान की सार्थकता इसी में है कि हर भारतीय राष्ट्रीय चेतना के आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे।
2: जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए। तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारें। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जन भागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
0: जयपुर में आयोजित ये तिरंगा रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत राज्य के अन्य स्थानों पर भी तिरंगा रैली और प्रभात फेरी जैसे आयोजन हुए। इनमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि आज से देशभर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जयपुर में आज 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण और परिवहन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रकृति संरक्षण में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में कार्य करने के लिए सरकार संकल्पित है, उनके विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं।
3: आदिवासी समाज के इस विश्व आदि दिवस पर ये हमारा संकल्प है, हर गाँव के अंदर हम दस्तक देकर उसके परिवार से मिलेंगे और उसको केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको चिकित्सा का लाभ मिले, उनको मकान मिले, कि पीने का पानी हो, बिजली हो, ताकि हम और बुनियादी जो आवश्यकता उनको पूरी करने का काम करें।
0: आदिवासी दिवस पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य आदिवासी समाज ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने जल संचयन की शपथ भी दिलाई। डूंगरपुर में हुए कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य सहित

0: कई आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पाली में भी आदिवासी दिवस पारंपरिक रूप से मनाया गया। वहीं बालोतरा जिले में कार्यरत मीणा समाज के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी दिवस मनाया। दौसा जिले के नांगल राजावतान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भाग लिया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में हुए कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। गौरतलब है कि ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता दर्शाने और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में आयोजित समारोह में पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान कर ये बात कही।
1: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाली जिले के सांडेराव गांव में प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म बनाया जाएगा। इस पर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस संस्थान में पशुओं की 30 प्रजातियों की नस्लों का सुधार और संवर्धन किया जा सकेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज इसके भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि ये सेंटर करीब 200 बीघा भूमि पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक और विशिष्ट पशु प्रजातियों का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि ये सेंटर एक अनुसंधान केंद्र नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। राज्य पुलिस की ओर से चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आज अजमेर में जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। आना सागर नई चौपाटी पर विशेष महिला सुरक्षा श्रृंखला का निर्माण किया गया। इसमें करीब 600 बालिकाओं और महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्राओं और कालिका यूनिट, सेल्फ डिफेंस टीम और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा स्लोगन लिखी पट्टियां लेकर आमजन को जागरूक किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और 2-3 स्थानों पर भारी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। बरसात से शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा जिले में भी दिन भर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। नागौर और हनुमानगढ़ में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज राज्य के 19 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल से 12 अगस्त तक राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। सावन के महीने में शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहरों और कस्बों में कावड़ यात्राएं निकाली गई। जयपुर के गलता सरोवर से आल सुबह से श्रद्धालु कावड़ों में पवित्र जल लेकर यात्रा के रूप में निकले। राजसमंद में आज गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से श्री परशुराम महादेव के लिए कावड़ यात्रा रवाना हुई। भीलवाड़ा के निम्बार्क आश्रम से हरणी महादेव मंदिर के लिए 5100 कावड़िए यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों

0: शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली को रवाना किया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रकृति संरक्षण में आदिवासियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। पशुओं की नस्लों में सुधार और संवर्धन के लिए प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म पाली के सांडेराव में बनाया जाएगा। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी, आज 19 जिलों में बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। फलौदी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रियंका तलानिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर परिषद टाउन हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और स्वतंत्रता दिवस समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। एडीएम ने संबंधित विभागों को समारोह से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले में आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ। इसके तहत तिरंगा रैली निकाली गई। ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें रैली, पोस्टर और कहानी प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां सहित शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को देश की अखंडता और एकता को सहेजने तथा मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। आगामी नगरीय निकाय और पंचायती आम चुनावों के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों बैठक की। बैठक में निर्वाचन संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया। इसके साथ ही संबंधित प्रभारी अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी गई। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सहकार सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषक सम्मान समारोह रखा गया। समारोह में जिला कलेक्टर ने किसानों से संवाद कर उनके द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी ली। साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्होंने कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने वाले चयनित किसानों को भी सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने कृषकों को अधिक से अधिक सहकारिता से जुड़ने और कृषि के उन्नत तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कोऑपरेटिव बैंक के सहायक अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई, शाखा प्रबंधक नितिन और अन्य सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिविर लगाए गए। मारी संभाल अभियान के तहत खींचन ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जाँच की गई। शिविर का उद्देश्य जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं से संवाद कर उन्हें नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने, संतुलित पोषण लेने, समय पर टीके लगवाने और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में बताया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बीते दिनों कलेक्ट्रेट में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मारी संभाल अभियान, लाडो प्रोत्साहन योजना, टीबी मुक्त अभियान, मौसमी बीमारियों और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बीते दिनों जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ। इस संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। संस्थान के पहले बैच में युवतियों और महिलाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने महिलाओं को RCT के माध्यम से अपने जीवन को संवारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिले को हरा भरा बनाने के लिए पिछले दिनों हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत कई सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही सरकारी

0: निजी कार्यालयों सहित शिक्षण संस्थानों में पौधरोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। इससे पहले जिला कलेक्टर ने अभियान की तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पौधरोपण की गतिविधियों को हरियालो राजस्थान ऐप पर दर्ज करने के निर्देश दिए, साथ ही लगाए जा रहे सभी पौधों की ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग सुनिश्चित करने को भी कहा। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। कांवड़िए विभिन्न तीर्थ स्थानों पर पवित्र सरोवरों का जल लाकर शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों और घरों में रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार यानी वन सोमवार पर शिवालयों में खासी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना की। इसी के साथ फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरों पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए राज्य स्तरीय तिरंगा रैली ने रवाना करिया। विश्व आदिवासी दिवस माथे प्रदेश माए की ठोड़ा कार्यक्रम बिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रकृति बचाबा माए आदिवासियों रा योगदान ने महताऊ बताया। जिनावरारी नस्ला माए सुधार और बढ़ोतरी खातर प्रदेश रो पहलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फॉर्म पालीरा सांडे राव माए बनायो जावेला। और राज्य री न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर जारी। आज 19 जिला माए बरसात रो अलर्ट। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कया के तिरंगो केवल राष्ट्र ध्वज नहीं है बल्कि देश री आन बान शान और करोड़ों देशवासियों री भावना रो प्रतीक है। वे कया के हर घर तिरंगा अभियान आज जनव्यापी अभियान रो रूप ले चुक्यो है। जयपुर माए अभियान रे तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली री शुरुआत रे मौके वणा देशवासियों सु आपरा घरा मात है तिरंगो फहरार अनेकता माए एकता और राष्ट्रीय अखंडता बनाया राखबा रो संदेश दिया।
2: तीन रंगों में केसरिया सफेद और हरा, तीन रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया जिसका अर्थ था प्रगति और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवन प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है।
1: इन मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कया के तिरंगा यात्रा जन जन रा अभियान रा रूप माए नई पीढ़ी माए राष्ट्र भावना ने मजबूत कर बारो जरियो बन रही है। मुख्यमंत्री कया के तिरंगा रो राजस्थानो गहरो नातो है। पहली भगत 15 अगस्त ने लाल किला माते फहरायो गयो तिरंगो राजस्थान माए ही तैयार वियो हो। श्री शर्मा कया के इन अभियान री सार्थकता इनी माए है कि हर भारतीय राष्ट्रीय चेतनारा आदर्श और मूल्या ने आपरा जीवन माए अपनावे।
3: जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए। तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जनभागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
1: जयपुर माए राखी तिरंगा रैली अल्बर्ट हॉलसून सरोवर बड़ी चौपड़ माथे पुगी। इन माए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा समेत कई प्रतिनिधि, आर्मी रा जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, पहली आला सैनिका समेत बड़ी संख्या माए नागरिक भाग लेना।

0: अभियान रे तहत राजगिरी दूजी ठोड़ा मा देवी तिरंगा रैली और प्रभात फेरी राखी गई। इन माए बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि भाग लेना। ध्यान जोग है कि आज सो देश भर माए हर घर तिरंगा अभियान शुरू भी है। 17 अगस्त तई चालबा वाला इन अभियान रु लगस लोगा ने आपरा घरा मात है तिरंगो फहराबा और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता सो जुड़िया कार्यक्रम माए भाग ले बाखातर प्रोत्साहित करनो है। इन बरस ओ अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम री 150वीं वर्षगांठ रे सागे मनायो जा रियो है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री श्री शर्मा जयपुर में आज 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण और परिवहन गाड़ियां ने हरी झंडी दिखाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि प्रकृति ने बचाबा माए आदिवासी समाज रो महताऊ योगदान है। आज विश्व आदिवासी दिवस मात है। कोटा माए राख्या एक कार्यक्रम माए भाग ले बारे पछ है। खबर नवीसाऊ बातचीत माए वे कया के आदिवासियां रा हित माए काम करबा खातर सरकार पूरी कोशिश करी है। वारा विकास खातर लगातार काम करियो जा रियो है।
1: आदिवासी समाज के इस विश्व आदि दिवस पर ये हमारा संकल्प है, हर गांव के अंदर हम दस्तक देकर उसके परिवार से मिलेंगे और उसको केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको चिकित्सा का लाभ मिले, उनको मकान मिले, कि पीने का पानी हो, बिजली हो, ताकि हम और बुनियादी जो आवश्यकता उनको पूरी करने का काम करें।
0: आदिवासी दिवस मात है, राज्य में न्यारी न्यारी ठोड़ा मात है कार्यक्रम रखा गया। डूंगरपुर माए व्या कार्यक्रम माए आदिवासी समाजरा लोग पारंपरिक वेशभूषा माए गैर नृत्य सागे रिझावनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन मौके आदिवासी महापुरुषारा चित्रामा से माला चढ़ार वाने याद करियो गयो। पाली माए भी आदिवासी दिवस पारंपरिक रूप माए मनायो गयो। वठिने बालोतरा जिला माए काम कर रिया मीणा समाजरा कर्मचारी अहलकार स्नेहमिलन कार्यक्रम राखर आदिवासी दिवस मनायो। दौसा जिला रा नागल राजा वतान माए राख्या कार्यक्रम माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाग लीना। बतायो जावे है कि ओ दिन आदिवासी समाज री संस्कृति परंपरा आन बान और अधिकारा खातर एकजुटता और आदिवासी गौरव रा तिवार रा रूप माए मनायो जावे है। इन बरस री थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयां रो सम्मान जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखी गई है। गृहमंत्री अमित शाह कहा कि मोदी सरकार कानियो औपनिवेशिक कालरा कानूनारी ठोड़ लाया गया तीन नया आपराधिक कानूनारो उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली रे मार्फत नागरिका ने टेम माथे न्याय दिलानो पक्को करनो है। गृहमंत्री गोरीमेंडूरा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रा मैदान माए राख्या जलसा माए पुंडुचेरी पुलिस ने राष्ट्रपति रो पुलिस ध्वज देर आ बात कही।
2: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: पाली जिला रा सांडेराव गांव माए प्रदेशो पहलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म बनायो जावेला। इन माथे 60 करोड़ रुपया री लागत आवेला। इन संस्थान माए जिनावरारी 30 प्रजातियारी नस्लां रो सुधार और संवर्धन करियो जा सकेला। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज इन भवन री नींव राखी। वणा बताया कि ओ सेंटर करीब 200 बीघा जमीन माथे बनायो जा रियो है। इनरो लगस प्रदेश री पारंपरिक और विशिष्ट पशु प्रजातियां ने बचावनो है। वे कया का ओ सेंटर एक अनुसंधान केंद्र नी वेला बल्कि ग्रामीण माली व्यवस्था ने मजबूत करबारो महताओ जरियो बनेला। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTSU जुड़िया मामला खातर शिक्षा मंत्रालय रा सचिव और ठावा अहलकारा सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया पोस्ट में कया के वणा संस्थागत व्यवस्थावा ने मजबूत करबा री प्रक्रिया ने सुचारू बनावा पढ़ानिया खातर जवाबदेही पक्की करबा सु जुड़िया महताव मुद्दा माथे चर्चा करी। श्री जोशी कया के सरकारो खास ध्यान मजबूत पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाबा माते है जिनसो हर एक विद्यार्थी दी आकांक्षावां पूरी

0: रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेवा वाला सगला स्वतंत्रता सेनानिया और आंदोलनकारियों ने आ श्रद्धांजलि दीनी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कया के आ वीरारो साहस हर भारतीय खातर प्रेरणा बनियो रहेला। प्रधानमंत्री कया के महात्मा गांधी री अगुवाई सु प्रेरित होर भारत छोड़ो रो आवाहन देश रा स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा ले रायो। वणा कया के इन आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन सु मुक्ति दिलाबा खातर भारत री जनता रा अटूट संकल्प ने याद रखियो जावेला। प्रदेश में थोड़ थोड़ मानसूनी बारिश रो दौर जारी है। लारला 24 घंटा में राज्य रा पूर्वी अलका में कुछ एक थोड़ा माथे हल्की और दूजी थोड़ा माथे भारी मेह बरसियो। राजधानी जयपुर में सुमारे सो रुक रुक कर मेह बरसबारो दौर चालियो, जिनसो शहरा निचला इलाका में पानी भर जाबा सो लोगा ने आबा जाबा में परेशानी रो सामनो करनो पड़ियो। दौसा जिला माए भी दिनभर हल्की सु मध्यम बारिश दर्ज करी गई। मौसम केंद्र जयपुर आज राज्य रा 19 जिला माए तेज बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। काल सु 12 अगस्त ताई राज्य रा दक्षिणी पूर्वी हल्का माए बारिश री गतिविधियां माए बढ़ोतरी होबा और एक कुछ एक थोड़ा माथे हल्की सु भारी बारिश होबारो अंदाजो है। केंद्र रे मुजब पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त ने और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त सु मेह बरसबा माए कमी आ सके है। सावन रा महीना माए शिव मंदिरा माए खास आयोजन वहरिया है। इनरे तहत आज राजधानी जयपुर समेत न्यारा न्यारा कस्बा माए कावड़ यात्रा काढ़ी गई। जयपुरा गलता सरोवर सु तड़के सु श्रद्धालु कावड़ माए पवित्र जल लेर यात्रा री रूप माए कड़िया। राजसमंद माए आज गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सु श्री परशुराम महादेव खातर कावड़ यात्रा रवाना हुई। भीलवाड़ा निम्बार का आश्रम सु हरणी महादेव मंदिर खातर 5100 कावड़िया रवाना विया। और अब है आखिर माए खास खबरां एकर फेरू। देश भर माए आसु हर घर तिरंगा अभियान री शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए राज्य स्तरीय तिरंगा रैली ने रवाना करिया। विश्व आदिवासी दिवस माथे प्रदेश माए कई ठोड़ा कार्यक्रम विया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रकृति बचाबा माए आदिवासियां रा योगदान ने महताऊ बताया। जिनावरारी नस्ला माए सुधार और बढ़ोतरी खातर प्रदेश रो पहलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म पालीरा सांडेराव माए बनायु जावेला। और राज्य री न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर जारी। आज 19 जिला माए बरसात रो अलर्ट। इंडसा के ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 28 पूरो व्यो माको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम फ्रीक्वेंसी 26.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुननिया सगळे परिवाराने भाई राजनका घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों, आपा सगळा आपने जीवन में उन्नति करण खातर, तरक्की करण खातर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में प्रयोग कर गए देखता रहा। निजी जीवन के अलावा बात करें तो आपा सगला खेती खड़ मिणक हाँ, और अपनी जिकी खेती है भी, खेती ने आपा आगे बढ़ाण खातर, खेती में उत्पादन बढ़ाण खातर, सफलता ज़्यादा हासिल करण खातर अपनी खेती में भी आपा भात भात का प्रयोग करता रहा। कदी कदी आपा ने बाऊँ फायदो दिखने मिले, कदी कदी थोड़ो बहुत

नुकसान भी अपने हो जाए। घर का जी का बड़ा बुढ़ा है, अगर बांगे बताए हिसाब वहाँ पर चला तो बांगे अनुसार आपनों जी को आगे बढ़नो है, वो बदलाव ने अगर स्वीकार करगा आप आगे बढ़ागा तो जीवन में सफलता आपने जरूर मिलेगी। जो आदमी आज की जी की जरूरत है बिने समझ गए जीवन में आगे बढ़े तो वो जीवन में खूब तरक्की खूब कामयाबी हासिल करें। केवल खेती पाती की बात को नहीं, अगर आप निजी जीवन में भी बात करें तो वर्तमान बदलाव ने समझ

लीगूं थोड़ो सो हट के सोचने लग जावा। इनके अलावा बात करा घर परिवार की, अपने घर का जिका बड़ा बूढ़ा है, अगर बांगी बात करा तो अपने परिवार और समाज की एक अमूल्य धरोहर अपना बड़ा बूढ़ा हुआ है। आपके जीवन को जितो भी समय है वो परिवार ने, समाज ने और देश के निर्माण में अपने घर का बड़ा बूढ़ा लगा हुआ है। बांगे करने जीवन को बहुत सारो अनुभव, ज्ञान और सब जरूरी बात संस्कारों को विशाल भंडार हुआ है। घर का जितना भी बड़ा बूढ़ा है बांगू हमेशा सम्मान करनो अपनी नैतिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी है। जिका परिवार में बुजुर्गों को सम्मान हुआ है, बठे प्रेम संस्कार और आपसी सहयोग की भावना हमेशा बनी रहे है। बुजुर्ग जिका हुआ है भाई लोगों अपने परिवार का हमेशा मार्गदर्शक रहा है। वे आपके अनुभव के आधार पर हमेशा अपने सही निर्णय लेने खातर सहायता प्रदान करें। घर का जितना भी टाबर है बने अच्छा संस्कार देना, घर की जितनी भी परंपरा है वह सिखाना और जीवन का जितना भी अच्छा माड़ा ज्ञान की चीज़ें हैं वह आपा ने हमेशा अवगत करा रहे हैं। बुजुर्गों के पास जीवन में क्या है, बहुत बार सुख दुख और कठिन परिस्थितियों को सामना बांगू करेड़ो हुआ है और हर स्थिति को अपने नाव ज़्यादा बने अनुभव हुए हैं। अगर बांगे अनुभव ना आपा आपके जीवन में उतारा तो आ युवा पीढ़ी है जिकी बा बहुत सी गलतियों बच सके हैं। बुजुर्गों के अनुभव को जब आपा सम्मान करांगा तो आपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिकी बिना कहे और बिना करे ही सुचारू रूप चालन लाग जाए। जी आपना बड़ा बूढ़ा है जीवन में हर परिस्थिति को सामना करे और बांगो अनुभव अपने खातर हमेशा मार्गदर्शन के रूप में सामने आवे। वह हमेशा अच्छा संस्कार आपने देवे। परिवार की जितनी भी परंपरा है, जिका भी संस्कार है, वह अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेवे। सब जरूरी बात परिवार ने एक धागा में बांध के रखे है। बुजुर्ग जिका हुए वह सारा सदस्य ने आपस में जुड़न में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावे और मूल तौर पर देखा तो परिवार के सागे और आपसरी में मिलन के है। जिका घर का बड़ा बूढ़ा है हमेशा आपने एक सुरक्षा प्रदान करें और खुशी प्रदान करें। समाज खातिर आपा प्रेरणा के तौर पर साबित हो सका, क्योंकि बुजुर्ग जी का है जीवन में खूब संघर्ष कर गए और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें, जिकी आपने युवा पीढ़ी ने प्रेरणा देवे है। और इनके अलावा कोई भी परिस्थिति जब इसी आ जाए तो घर का बड़ा बूढ़ा हमेशा आपने एक सही राह दिखावा है कि ई तरीकों चाल के आप अगर वो काम करा तो यहाँ बढ़िया तरीकों काम हो सके। आपा बांगे प्रति बदला में अगर कुछ करना चाहवा तो बहुत ज़्यादा वह आपन को नहीं मांगे। वह सिर्फ इतनी मांगे कि मारूँ राजी मता प्रेम हूँ और अच्छे तरीक़े हूँ बातचीत कर लियो। जकी बात वह कहनी चाहे वह बात आपा ध्यान में सुन लेवा। बांगा जिका भी विचार है, जिका भी अनुभव है, बना आपा महत्व देवा। जितनी भी बांगी जरूरत है बांगू ध्यान रखा। कदे वह बीमार हो जाए या शरीर में कोई कमजोरी सी बाने महसूस हुए तो बांगी आपा बी टाइम पर अच्छी देखभाल करा। परिवार का जितना भी जरूरी निर्णय आपा ने लेना हुए हर निर्णय में आपा बांगी राय जरूर जाना और हर परिस्थिति की आपा जब परिवार में चिंतन करा तो बाने शामिल जरूर करा। बांगे सागे जितो उसके भी तो समय बितावा, कदे भी बाने अकेलोपन महसूस ना होने देवा। बांगे सामने हमेशा प्यार हूँ और खूब आदर मान सम्मान के सागे बाऊ बातचीत करा। उम्र के सागे सागे कई बार बड़ा बुजुर्ग हरी बीमारी हो जाए और वह खाण पीण है जिको वो भी कम कर देवे तो बांगो जिको रोज को खाणो पीणो है, बांगी जरूरत है, दवाई पानी को ध्यान रखना भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बने है। बच्चा जिका भी है बाने भी आपा बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा करण की जिकी भावना है वह जरूर सिखावा। आज वो जिको आधुनिक समय है या कह दें जिको अपनो व्यस्त जीवन शैली है, भी मैं के कई परिवार का युवा साथी है जिका वह आपके काम में या कह दें और जिकी अन्य जिम्मेदारियां हैं वह में इतना व्यस्त हो जाए कि आपके घर के बड़ा बूढ़ा ने वह पूरा टाइम कौन दे पावे। कई बुजुर्ग ऐसा हुआ है जिका अकेलापन में आपका जीवन काटना चालू कर देवे और इस स्थिति में क्या है परिवार और समाज दोनों है वह खतरा में आ जाए। आधुनिकता आपा अपनावा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके सागे सागे आपकी जिकी पारिवारिक जिम्मेदारी है।

संस्कार है वे भी आपने सागे लेके चालना है। बुजुर्गों की जरूरत केवल आपने आर्थिक सहायता खातर को नहीं बने सम्मान प्रेम समय और अपनोपन भी आपने देनु है। हमेशा आपा बच्चा ने बचपन में बुजुर्गों को सम्मान करनु सिखावा। दादा दादी नाना नानी आगे सागे समय बिताने खातर बच्चा ने प्रेरित करा और बच्चा ने परिवार को जिको इतिहास है संस्कृति है परिवार की जिकी भी परंपरा है आगे जानकारी बड़ा बुजुर्गों के पैरा में बैठे ही मिल रहे हैं। बुजुर्गों की जितनी कहानियां हैं जितना भी अनुभव है वह बच्चा ने जीवन में बहुत सी सीख प्रदान करें। मूल तौर पर बात करें तो अपना परिवार और समाज की अमूल्य संपत्ति है बुजुर्ग। बांगू सम्मान केवल अपनी परंपरा ही को नहीं बल्कि अपनों एक नैतिक कर्तव्य है। हमेशा आपा बांगे अनुभवों सीखा और बांगे जीवन के अंतिम चरण में हमेशा बाने प्रेम सम्मान और सुरक्षा को अनुभव करावा। जिका समाज में यह कहवा है कि बुजुर्गों को सम्मान हुआ है वो समाज आपकी संस्कृति संस्कार और मानवीय जितना भी मूल्य है बाने सुरक्षित रखे और हमेशा सम्मान की दृष्टि में जब आपा अपने घर के बड़ा बुढ़ा ने देखांगा परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखांगा तो देवी देवता भी अपने घर में वास करेगा। तो इनके खातर सदा आपके घर के बड़ा बुढ़ाओं आप सम्मान करा बांगी सेवा करा और आदर सत्कार हमेशा बने दीता रहा। कार्यक्रम में चलांगा आप आगे की तरफ और सुनावांगा थाने वो भजन लो सुनो सा।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: संदेश पहला भाई लोगों सुनियो आपा भजन चला कार्यक्रम आगे की तरफ। भाई लोगों आपा सगला के खेती खड़ मिणक हाँ और अपनी खेती पाती में होने वाला जितना भी काम धंधा है, जितनी भी जरूरतें हैं वांगू आपा हमेशा ध्यान रखा। पर बात कर आपा खेती के अलावा तो आपा बहुत तरीका का पशु रखा, जैसे कि एक आपा ने आर्थिक सहायता भी मिलती रहे और सागे सागे अपना

का रोज़मर्रा का काम धंधा है वह भी बहुत आसानी निकल जाए। जिको पशुधन भाई लोगों बापा राखण लाग रहा तो बिंगी सार संभाल की जिम्मेदारी बिंगो अच्छो स्वास्थ्य रो है और बिंगो जिको स्वास्थ्य है अच्छो रहन गए सागे सागे पशु जिको है लंबे समय तक स्वस्थ बने रो है इनकी जिम्मेदारी भी अपनी ही है। पशु जिया जिया देखो बड़ो हुआ है तो भी मैं के हारी बीमारी लाग गए कई बार आपा समय रहते भी बीमारी ने पहचान को नहीं पावा तो कई बार के पशु बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और कदी कदी पशु की मृत्यु भी हो जाए। तो मूल तौर पर देखा तो बहुत सारा रोग अपने पशुओं में लागे है पर आज आपा विशेष तौर पर बात करांगा गाय और भैंसा में जब थनेड़ा रोग लाग जाए तो बी टाइम पर आपा बचाव किया कर सका हाँ। थनेड़ा रोग भाई लोगों जिन्हें आपा मस्टाइटिस भी कह देवा गाय और भैंसा में होने वालों एक प्रमुख रोग है। यूं के पशुओं के थन में कदे कदे सूजन और संक्रमण हो जाए और दूध की मात्रा प्रभावित हुआ है कई बार दूध की गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए और रोग अपना जितना भी पशुपालक भाई है माने आर्थिक नुकसान पहुंचा सके इनके खातर पशुशाला की स्वच्छता सही दूध दोहन और समय पर उपचार आपा अगर कर देवा तो पशुओं आने बचा सका हाँ। आपा थनेला रोग का अगर प्रमुख कारण की बात करें आपा तो मुख्य तौर पर जीवाणुओं के कारण वो रोग फैले हैं गंदो वातावरण दूषित हाथ या दूध निकालने का जितना भी उपकरण है या थन पर लागड़ी कोई चोट के माध्यम हो संक्रमण है जिसको वो फैलने लग जाए। रोग को खतरो कई परिस्थितियों में इतो ज़्यादा बढ़ जाए भी मैं के पशु इतो बीमार हो जाए कि दूध देने तो छोड़ो पशु जिंदा रहन खातर भी बहुत परेशान रहने लग जाए। मुख्य तौर पर देखा तो कुछ इसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें ये रोग को खतरो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए है जिया गंदी और गीली पशुशाला पशुओं के थना को गंदो रहनो दूध निकालता टाइम स्वच्छता को ध्यान न रखना थना पर चोट लागनो या संक्रमित पशु के सागे आपा दूध निकाल लेनो अस्वच्छ तरीका दूध निकाल लो या दूध निकालने के बाद पशुओं का जिका थन है बने साफ ना करके सीधो ही खुल्लो छोड़ देनो। अगर लक्षणा की बात करें आपा तो आपा मुख्य तौर पर देखा थना में सूजन गर्माहट या पशु के थना पर जिया ही हाथ लगाओ तो पशु ने दर्द महसूस हो पशु को दूध है बिंगी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाए दूध को रंग और बिंगी बनावट बा भी बदलने लग जाए दूध में गांठ या कोई असामान्य पदार्थ आपने दिखाई देने लग जाए दूध की धार पतली होने लग जाए और कदे कदे बहुत ज़्यादा मटमैली सी दिखने लग जाए। गंभीर स्थिति में पशुओं ने बुखार कमजोरी और भूख लागने भी कम हो जाए कई बार जिको वो माइट्स है पशुओं के शरीर ई तरीकों बाहर निकले का अपने स्पष्ट लक्षण दिखाई को नहीं देवे लेकिन दूध उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होती रहे तो इनके खातर नियमित जांच बहुत जरूरी है। अब आपा पशुओं ने यूं किया बचावा और के सावधानी रखा सब जरूरी तो आपा पशुशाला ने साफ रखा और हमेशा सूखी रखा गोबर या मलमूत्र या गंदो पानी कभी भी आपा पशुशाला में जमा ना होने देवा फर्श ने नियमित रूप साफ करा और पशुओं को बैठने को जी को स्थान है बिने भी सूखो रखा दूध निकालने पहले हमेशा थना की सफाई करा और साफ कराऊँ साफ कपड़ा अच्छी तरीकों बिने सुखा देवा हर पशु खातर अलग अलग आपा साफ कपड़ों अगर उपयोग करा तो बहुत बेहतर होगा। इनके अलावा दूध निकालने को जिको तरीको है अपनों वो भी साफ सुथरो होना चाहिए यानी कि साफ आता हूँ दूध निकाला और थना ने कोई भी प्रकार की चोट ना पहुँचावा ज़्यादा जोर दूध खींचने पर या गलत तरीकों मशीन को उपयोग करने भी आपने बचलो है। दूध निकालने के बाद भाई लोगों आपने विशेष सावधानियाँ रखनी है पशु को जिको भी थन है बिने संक्रमण रोकने खातर आपा टीट डिप है या कोई भी जिको डिसइन्फेक्टेंट है बीऊँ बिंग थन ने साफ करा जिकाऊँ के संक्रमण की संभावना भी समय के सागे कम हो जाए दूध निकालने के तुरंत बाद पशु ने कुछ टाइम तक खड़े रखा तो बीऊँ भी आपने फायदों मिले क्योंकि इस दौरान थना का जिका छेद है वह धीरे धीरे बंद हो जाए। कोई भी पशु थनेला रोगों अगर ग्रसित है और आपने लक्षण दिखाई दे जाए तो बिना आपा स्वस्थ पशुओं अलग रखा और बिंगो दूध भी सबों आखिर में निकाला बिंग खातर जिका भी बर्तन है वह भी न्यारा रखा और कपड़ों भी थन साफ करने वालों अलग रखा

दूध में कोई भी प्रकार की असामान्यता या उत्पादन में अचानक आपा ने कमी दिखाई दे तो पशु चिकित्सकों तुरंत आपा जांच करावा। जरूरत पड़न पर आपा CMT वर्गी जांच चाहे जिकिन आपा कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट बोले है ए जाँचों भी आपा शुरुआती संक्रमण को पतो लगा सका। सुबह जरूरी पशु ने पर्याप्त ऊर्जा प्रोटीन और खनिज आड़ो आहार आपा खुआवा जिका में पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी उपलब्ध हुए। साफ सुथरो और पर्याप्त पानी भी आपा बिना प्यावा। उचित पोषण खातर आपा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बिंगी बनाए रखने में मदद कर। पशुओं ने इसी जगह बांधा जिठे कोई भी नुकीली वस्तु या कोई टूटड़ा उपकरण ना हो, क्योंकि बिंगी वजह ठंड पर चोट लाग जाए और कदे कदे पशुओं में संक्रमण को खतरो भी बढ़ जाए। जे पशुओं ने थनीलो रोग हो जाए तो आपा किया पहचान करांगा। मूल तौर पर तो थना में तेज सूजन, दर्द या बुखार, दूध गमा, खून या मवाद या पशु की हालत खराब होने पर तुरंत आपा पशु चिकित्सक को संपर्क करा। बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक या दवाई पशु ने ना देवा और उपचार के दौरान निकालो जितु भी दूध है वो चिकित्सक द्वारा बताए गए माध्यमों ही आपा ने निकालना है और मानव प्रयोग में भी ने कोनी लेना है। गाय और भैंसा में भाई लोगों थनेला रोगों बचावों सबसे प्रभावी तरीको ये है साफ सफाई, सही पद्धतियों दूध निकालना, थना की नियमित जांच और टैम पर भी वो उपचार। पशुशाला ने साफ सुथरो सुखो राखा, दूध निकालने पहले और बाद में थना की अच्छी सफाई कर देवा, संक्रमित पशु ने न्यारो बांध देवा तो यूं के रोग को जिको खतरो है वो काफ़ी हद तक रुक सका। जिका पशु भी स्वस्थ रहे, दूध की गुणवत्ता भी बनी रहे और पशुपालक भाई ने आर्थिक नुकसान भी आपा बचा सका। चला कार्यक्रम में आगे की तरफ सुना देवा थाने एक गीत, लो सुनो सा।

सुनो भाई लोगों, आपा गीत चला एक बार फिर हूँ अपनी खेती पाती की दुनिया में और बात कर लेवा कीचो खाद है जी की बिंगी आज के टाइम पर अपनी खेती में कितनी उपयोगिता है। आप सगला जाना कि केंचुआ खाद ने वर्मी कंपोस्ट भी कहो जावे। केंचुआ की सहायता हूँ जितना भी जैविक पदार्थ है जिया गोबर, फसल अवशेष, पत्तियाँ और भी जितो जैविक कचरो है बिना सड़ा गया तैयार करने वाली एकदम उत्तम जैविक खाद है। इमें बूटा खातर आवश्यक पोषक तत्व होवे और बांगे सागे सागे लाभकारी सूक्ष्म जीव भी पाया जावे। माटी की उर्वरता बढ़ाने खातर टिकाऊ खेती खातरा बहुत उपयोगी है। अगर मूल रूपों आपा बात करा केंचुआ खाद का फायदा तो माटी की उर्वरता शक्तियाँ बढ़ावे किया। केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाया जावे है जिका के प्रयोगों के माटी में पोषक तत्वों की उपलब्धता है बा बढ़ जाए। केंचुआ खाद बर्तनों के अपनी माटी की जिकी संरचना है वह में भी सुधार हुए है। वर्मी कंपोस्ट माटी ने के

भुरभुरी बनाते हुए जखों के माटी में हवा को संचार बेहतर तरीका हुआ है और बूटा की जितनी भी जड़ा है बने भी फैलन खातर अच्छो वातावरण मिल जाए। वर्मी कंपोस्ट आपने जिकी जमीन है बीमें पानी धारण करण की जिकी क्षमता है बिने भी बढ़ा देवे। केंचुआ खाद माटी की जिकी पानी रोकण की जिकी क्षमता है बिने बढ़ावे है जिकाऊ के सिंचाई की आवश्यकता समय के सागे कम होने लग जाए और सूखा की स्थिति में भी पौधा ने फायदों मिले। लाभकारी सूक्ष्म जीवों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुए हैं। इनमें मौजूद कई ऐसा लाभकारी सूक्ष्म जीव हुए जिका माटी में जैविक गतिविधियां ने बढ़ावे और पोषक तत्वों के चक्रण में काफ़ी सहायता प्रदान करें। सब जरूरी बात भाई लोगों, रासायनिक जितना भी उर्वरक है बांग ऊपर निर्भरता अपनी कम हो जाए क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का नियमित उपयोग हूँ रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता आपा समय के सागे बहुत हद तक कम कर सका। यूँ खेती की जिकी लागत है बिना घटाण में भी आपा ने फायदो मिला है। पौधा की जिकी बढ़वार है भी मैं किया सहायक बने क्योंकि केंचुआ खाद में उपलब्ध जितना भी पोषक तत्व हो है वह बूटा की जड़ बूटा का तना और पत्तियां के विकास में काफ़ी सहायता प्रदान करें और उचित मात्रा में जब आप उपयोग करें तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हो जाए। जैविक कुचरा को भी आप उपयोगी में कर सका हाँ जिया गोबर है पत्तियाँ हैं खेती का बचड़ा जिका भी अवशेष है अन्य जिका भी जैविक कचरा है बेने आपा वर्मी कंपोस्ट में बदल गए बांगो उपयोग खाद के रूपों दोबारा कर सका हाँ। यूं के कचरा प्रबंधन में भी आपा ने काफ़ी फायदों मिले। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट पर्यावरण के अनुकूल खाद है। जैविक कचरा के उचित प्रबंधन में आपा ने काफ़ी सहायता प्रदान करे और खुला में के कई बार कचरो सीधो घेर दे वहाँ पर तो बींग सड़नों के है बहुत सारी दुर्गंध पैदा हुए और बहुत सारो प्रदूषण भी हो जावे है तो आ बीने भी कम करे। सब जरूरी बात आपने खेती की जिकी लागत है वह भी कम कर देवे है क्योंकि किसान भाई आपके खेत में पशुपालन उपलब्ध जिको गोबर है फसल का जिका अवशेष है वह खुद एक वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार कर लेवे है तो बाजारों खाद खरीदने में जिको खर्चो है वो अपना आप कम हो जाए। प्राकृतिक और जैविक खेती की बात करें तो भी अवधारणा ने समस्त थका वर्मी कंपोस्ट खाद को निर्माण करो जावे। केंचुआ खाद आज की हुए प्राकृतिक और जैविक खेती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इनको प्रयोग सब्जियां में फलों में अनाज दलहन तिलहन और फूलों की खेती में भी करो जावे है। विशेष तौर पर आपने केंचुआ खाद को प्रयोग करते टाइम कुछ सावधानियाँ बरतनी है जी में पूरी तरीकों तैयार और अच्छी तरीकों सड़ी गोबर की खाद को आपने प्रयोग करना है और बहुत अधिक मात्रा में खाद डालने आपने बचना है जितनी जरूरत है बितो ही आपा खेत में आ खाद मिलावा। खाद ने लंबे टाइम तक तेज धूप या ज़्यादा बारिश हो हमेशा आपने बचा के रखना है। जितना भी रासायनिक कीटनाशक है बाऊ सीधो संपर्क ना हुए इंगो भी आपने प्रबंध करना है नहीं तो केंचुआ और लाभकारी जितना भी सूक्ष्म जीव है बने नुकसान हो सके। इनके अलावा बात करें तो फसल और माटी की जिकी जरूरत है बिने समझ गया आपा सारू काम करना है। मूल तौर पर भाई लोगों केंचुआ खाद एक उपयोगी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जैविक खाद है। आ माटी की उर्वरता शक्ति संरचना पानी धारण करने की क्षमता आ सगड़ा में सुधार करने के सागे सागे जैविक कचरा के उचित उपयोग में भी सहायक है। किसान भाई को नियमित और संतुलित उपयोग करगा आपके खेती की लागत कम कर सके माटी को जिको स्वास्थ्य है बिना बनाए रख सके और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके है। ई तरीकों किसान भाई जी का प्राकृतिक और जैविक खेती की भावना है बिना समझ गए आपकी खेती में सुधार कर सके और रसायनों जिको अंधाधुंध प्रयोग होने लाग रहे है बिना आपकी खेती में काफ़ी हद तक कम कर सके है भाई लोगों। चला कार्यक्रम में आगे की तरफ और सुना देवा थाने एक रागणी लो सुनो साहब।

सुनी भाई लोगों आपा रागनी चला कार्यक्रम में आगे की तरफ और आ दिन आपा देखण लाग रहे हाँ का आपा आज की प्राकृतिक खेती की अवधारणा है बिंगे प्रति पूरो सजग होना के बावजूद भी आपको काम जल्दी कराने खातर अंधाधुंध रसायनों को प्रयोग आपकी खेती में आपा करण लाग रहे हाँ। रसायनों आपने खेती पाती में होने वाली जी की लागत है खर्चो है वो तो बढ़ ही है पर आपने जी की फसल हैं बेमा आपा जहर भी बढ़ान लाग रहा। जितनी भी फसल आपा उगावा आपने कीट और रोगों बचाने खातर के है आपा कीटनाशकों को प्रयोग करा उचित मात्रा और सही विधियों जब आपा उपयोग करा तो फसल उत्पादन में वो खूब भूमिका निभावे। लेकिन अगर बताएड़ी जी की मात्रा है ब्यू ज़्यादा गलत समय पर या बिना कोई सुरक्षा सावधानी के आपा आँ कीटनाशकों को प्रयोग करें तो आपने स्वास्थ्य के सागे सागे पशु माटी पानी और पर्यावरण के खातर भी वो हानिकारक हो गए। तो इन खातर ध्यान रखा कि कीटनाशकों को हमेशा आपने जरूरत पड़ने पर समझदारी और आवश्यकता आधारित उपयोग ही करना है। मुख्य दुष्परिणामों की बात करें तो सबसे पहले मानव स्वास्थ्य पर इनको बुरा प्रभाव पड़े क्योंकि कीटनाशक के सीधे संपर्क में आने वालों जिको भी किसान भाई है या अपने मजदूर है बिंगी चमड़ी बिंगी आँखा और बिना स्वास्थ्य संबंधी जिकी तकलीफें बह हो जाए। ज़्यादा संपर्क की स्थिति में कई बार देखा तो गंभीर लक्षण भी उत्पन्न होने लग जाए। खाद्य पदार्थों का जिका अवशेष है बांगी बात करें तो जय फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव कटाई गए जमा करना आपा करें तो निर्धारित मात्राओं आपा ज़्यादा दवाई कदे कदे प्रयोग कर लेवा भी स्थिति में जिका फल है सब्जी है या अनाज है वह में कीटनाशकों का अवशेष भी रह जाए। माटी की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़े क्योंकि भाई लोगों कीटनाशकों को जब आपा जरूरत में ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो माटी में मौजूद जितना भी लाभकारी सूक्ष्म जीव है वह प्रभावित होने लग जाएगा। यूँ माटी की जैविक गतिविधि और दीर्घकालीन जिको माटी को स्वास्थ्य है भी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माटी के विषय में तो आपने किसान भाई हमेशा ध्यान रखे जका भी रसायन की आपने माटी ने जरूरत है जका भी सूक्ष्म तत्व की या पोषक तत्व की जरूरत है तो बिंगी जानकारी आपा हमेशा माटी जाँच हुई पतो लगावा। माटी जाँच में अपनी फसल में के चीज़ों की जरूरत हो ब्यू पहले ही आपा माटी की जांच करा लेवा जो माटी में कोई भी चीज़ की कमी है बिंगू आपा ने ठा पड़ जाए किसो पोषक तत्व कितनी मात्रा में माटी के माँ उपलब्ध है और किसा पोषक तत्व की कमी है बस सारी जानकारी आपा ने माटी जाँचों पतो लाग जाए। इनके अलावा बिरखा और सिंचाई पानी के सागे सागे कीटनाशक कदे कदे देखा आपा खेतों बह गए तालाब में नहर में नदियाँ में और भूजल जी को स्रोत हो बठे तक भी पहुंच जावे जो कहे कि पानी को स्रोत भी प्रदूषित होने को खतरों बने रहे। अपने माटी में उपलब्ध जिका भी लाभकारी कीट है बने भी बहुत ज़्यादा कीटनाशकों को प्रयोग नुकसान पहुंचावे। हानिकारक कीट है जिका बे तो यूँ खत्म हुआ ही है बल्कि मधुमक्खी तितली लेडी बर्ड बीटल है या जिका और लाभकारी कीट है बने भी नुकसान पहुँचे हैं। तो इनके खातर प्राकृतिक कीट नियंत्रण और परागण जिको है वो आपने ज़्यादा फायदों पहुँचावेगा। जिका भी आसपास पशु पक्षी उड़न लाग रहे है कीटनाशकों का प्रभाव भाई लोगों बांगों पर भी पड़े हैं। कीटनाशकों के कई बारी चारों दूषित हो जाए पानी दूषित हो जाए और भोजन खाणों के पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। तो इनके खातर पशुओं ने हाल ही में छिड़कड़ी दवाई को कोई भी सुखेत है बठे चरणों आपा बचावा। कीटा में प्रतिरोधक जी की क्षमता हुए वह भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाए क्योंकि एक ही कीटनाशक को आपा बार बार प्रयोग करें तो कई कीट ऐसा हुआ है जिका भी दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेवा है परिणाम स्वरूप वह दवाई बाद में बिल्कुल ही प्रभाव को नहीं छोड़े। सब जरूरी बात भाई लोगों पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ है कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग करें जिका हवा में माटी में पानी में सब जगह प्रदूषण फैलाए और स्थानीय जिकी अपनी जैव विविधता है वह भी प्रभावित हुए। सब जरूरी बात जी कि आपने किसान परिवार ने परेशान करे बा आ कि बिना जरूरत के जब आप बार बार कीटनाशकों को छिड़काव करा या जल्दी कोई भी

चीज़ को रिजल्ट लेने खातर आप अनावश्यक कीटनाशकों को प्रयोग कर लेवा तो आपने खेती की जिसकी लागत है वह भी बढ़े और होने वाला फायदों समय के साथ है कम होने लग जाए। अगर कीटनाशकों के दुष्परिणाम आपने कम करना है तो कुछ 5, 7, 10 बातें आप ध्यान में रख लेवा। सबू पहले तो कीट की सही पहचान करनी आप सीखा, और अगर आप पहचान नहीं कर सका तो कोई जानकार व्यक्ति ने बुलाकर आप पहचान करावा या नज़दीक के कोई भी चिकित्सक ने बुला के बिंगी जांच करावा और बिंग बाद बताए अनुसार ही दवाई को आपा प्रयोग करा। केवल जिका बताएड़ा कीटनाशी है और जिकी बताएड़ी मात्रा है बिंगो ही आपा ने प्रयोग करना है। एक ही दवाई को आपा बार बार प्रयोग करनु बच्चा। समेकित जिको कीट प्रबंधन है बिना आपा अपना सका फेरोमेन ट्रैप पीला जिका चिपचिपा ट्रैप है और जैविक नियंत्रण वर्गा जिका उपाय है बाना आपा प्राथमिकता देवा। मधुमक्खी और अन्य जितना भी लाभकारी कीट है बांगी सक्रियता के टाइम पर छिड़काव बचा। कीटनाशकों के लेबल पर हमेशा निर्देश देड़ा हुआ है तो बाने आपा ध्यान समझदारी के साथ प्रयोग में लेवा और कटाई पहले जिकी बिंगी प्रतीक्षा अवधि है बिंगू भी आपा पालन करा। छिड़काव के दौरान हमेशा मास्क दस्ताना जूता और सुरक्षा उपकरण पूर्ण तरीकों पहरा। सब जरूरी बात शरीर पूरी तरीकों ढक के अच्छी तरीकों कपड़ा पहरा। खाली जिका भी कीटनाशक का बर्तन है कंटेनर है बांगो सुरक्षित आपा निस्तारण करा और कीटनाशकों बच्चा ने पशुआ ने आने दूर रखा। आधुनिक कृषि में कीटनाशक एक उपयोगी साधन के रूप में निकल गया तो है लेकिन आंगो अनियंत्रित और गलत प्रयोग जब आपा करने लग जाए तो दुष्परिणाम भी आपा ने बहुत सारा पैदा हुए। तो इन खातर जरूरत के अनुसार सही दवाई सही मात्रा और सही समय का जो सिद्धांत है बिना आपने समझना चाहिए। समेकित कीट प्रबंधन और जैविक जिका भी उपाय है बने बढ़ावा दे गए कीटनाशकों के दुष्प्रभाव ना आपा कम कर सका हाँ और खेती ने सुरक्षित और टिकाऊ बढ़ा सका हाँ। चला आपा कार्यक्रम में आगे की तरफ और सुनावा था नव गीत लो सुनो सा।

0: सुनो भाई लोगों, आपा गीत अब आपा बड़ा कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ और सुनाओ था ना वो गीत लियो सुनो सा।
1: चाल रही
0: को नहीं।

0: बाल भाई रे कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी करा फैसलो नानी तो कंजूस
1: भाई लोगों ई गीत के सागे आज को चौपाल कार्यक्रम अठे संपन्न करणगी भाई राजन आ गया देव राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं NNCP प्रोडक्शन की फिल्म सरगम के गीत। ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस फिल्म के सभी गीत बड़े ही मधुर गीत हैं। सभी गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत बड़ा ही कर्णप्रिय और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, और इनके साथ कुछ गीतों में लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों, बात अगर फिल्म सरगम की करते हैं तो 1979 में आई फिल्म सरगम के सभी गीत बहुत ही पॉपुलर रहे। इन्होंने अपने फिल्मी इतिहास में एक छाप छोड़ी। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसी आवाज़ें इस फिल्म को अमर कर गईं। इन सब का मेल फिल्म के संगीत को यादगार बना गया और वो यादें आज भी हमारे साथ हैं, बनी हुई हैं। और आप सुन रही हैं फिल्म सरगम के गीत। इस फिल्म के सभी गीत बहुत ही अच्छे और बेहतरीन गीत रहे हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और लता मंगेशकर की, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और गीत आनंद बख्शी का। आज की फिल्म है सरगम।

बात करते हैं गीत डफली वाले डफली बजा। यह फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत और इसमें आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। स्क्रीन पर ऋषि कपूर और जया प्रदा ने बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय किया। इसमें ऋषि कपूर ने डफली वादन किया और जया प्रदा ने नृत्य किया, जिनमें घुंघरुओं की आवाज़ें हैं। इस गीत की खास बात यह है कि फिल्म की कहानी में जया प्रदा का पात्र बोल नहीं सकता और नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, इसलिए संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि कहानी कहने का माध्यम बन

मैं नाचू तू नचा। जी हाँ दोस्तों, आप गीत सुन रहे थे डफली वाले, डफली बजा। इस गीत ने 1980 में लोकप्रियता के सारे कीर्तमान तोड़ दिए थे। आपको याद है ना, बिनाका गीतमाला 1980 का ये सबसे शीर्ष गीत रहा था, और यही वो गीत था जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिलाने में सहयोग किया था। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म सरगम के गीतों को, हम बता रहे हैं इन गीतों के बारे में और आपको सुनवा भी रहे हैं। इसी फिल्म का एक गीत है, मुझे मत रोको मुझे गाने दो। दोस्तों, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, और मोहम्मद रफ़ी जब गाते थे तो वो कोई भी गीत हो उसमें अत्यंत भावपूर्ण जो भावनाएं भर देते थे। फिल्म की परिस्थिति में यह गीत केवल गाने की इच्छा नहीं बल्कि अपने भीतर की अभिव्यक्ति को रोक न पाने की पुकार बन जाता है। रफ़ी साहब ने इसमें दर्द, उत्साह और आत्मविश्वास तीनों भावों को एक साथ व्यक्त किया है। सरगम फिल्म की विशेषता यही है कि संगीत की कहानी से अलग नहीं चलता। जो यह इसका संगीत है वो कहानी से अलग नहीं चलता, बल्कि कहानी के पात्रों की भावनाओं को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। लीजिए सुनते हैं ये वाला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म सरगम के गीत बलविंद्र कल्याणा के साथ। बात कर रहे हैं इस फिल्म के गीतों की, तो इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो प्रकृति से संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है, कोयल बोली दुनिया डोली। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं, बड़ी ही मधुर आवाज़ें हैं। गीत में प्रकृति, प्रेम और संगीत का सुंदर मेल है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म की अदाकारा जयाप्रदा का जो पात्र है वो बोल नहीं सकता, इसलिए उसकी भावनाओं को गीत और सांकेतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाना फिल्म की सबसे खूबसूरत कल्पनाओं में से एक है। सुनते हैं ये गीत।

कोयल बोली दुनिया डोली। दोस्तों ये गीत आपने सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। ऐसा ही एक और गीत था इस फिल्म में, यानी कि सरगम फिल्म में, पर्वत के उस पार, पर्वत के इस पार। ये गीत, इस गीत की शूटिंग ऊटी में हुई थी। गीत में पहाड़ों और प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि नहीं बनाया गया, बल्कि प्रेम और विरह की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसमें इस्तेमाल किया गया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साजों का उपयोग और शब्द आनंद बख्शी के, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और सभी गीत इसके बहुत ही पॉपुलर रहे अपने ज़माने में, जो आज भी पॉपुलर हैं। सुनते हैं फिल्म सरगम का ये वाला गीत।

दोस्तों, सरगम फिल्म केवल ऋषि कपूर के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। जयप्रदा को हिंदी सिनेमा में बड़े पैमाने पर पहचान दिलाने वाली ये ही फिल्म थी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। आज की फिल्म थी सरगम। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के सूरतगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की, कहा जो लोग खेलों में भाग लेते हैं वे समृद्ध होंगे। अश्मिता चालिहा ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, जीता कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने रजत पदक जीता। एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पांडियन ने रजत पदक हासिल किया। निकी कालियांदा पुनाचा और गोंजालो एस्कोबार ने पुरुष डबल्स लैंगस्टन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। डूरंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 85वें संस्करण की अगुवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के

0: ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां अश्मिता चालिहा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान कियान शी को हराकर पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर खास रिपोर्ट।
1: मुकाबले की शुरुआत अश्मिता के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन पहला गेम हारने के बाद अश्मिता ने शानदार वापसी की और 53 मिनट तक चले मुकाबले में हान कियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हरा दिया।
2: फर्स्ट टाइटल इन 2026 अश्मिता वर्ल्ड नंबर 50 इज बीटन द वर्ल्ड नंबर 35 इन सेंसेशनल फॉर्म। दैट्स द फाइनल, दैट्स द रिजल्ट, 14-21, 21-14, 21-14।
1: अश्मिता ने पहले क्वालिफायर में रीरिना हिरामोतो और फिर किम मेनजी को सीधे गेम में हराया और क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेजी को 20-22, 21-15 और 21-19 से मात दी। सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता ने अपने ही देश की खिलाड़ी रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। वो इस वर्ष सुपर 300 खिताब जीतने वाली देविका सिहाग और तन्वी शर्मा के बाद तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कुल मिलाकर कोरिया मास्टर्स फाइनल में जीत के साथ वो इस साल सिंगल्स BWF खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी हैं। उनसे पहले तन्वी ने ताइपे ओपन, पीवी सिंधु ने जापान ओपन और देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीता है। इससे पहले अश्मिता ने 2018 और 2023 में खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया था।
2: She's come through, add to her three titles she's picked up on the International Challenge Series since 2018. The last one was in 2023, the Maldives International. And the 26-year-old is back on the podium. First in 2026.
1: इस जीत के साथ अश्मिता पहली बार रैंकिंग में टॉप 40 में जगह बनाएंगी। मई में 3 महीने तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए BWF टूर में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एथलेटिक्स पर। ओरेगन के यूजीन में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.21 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कूद की बराबरी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी प्रतियोगिता के पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता शाहनवाज खान को बधाई दी है।
3: बसंत ने पहले 2.06 मीटर, फिर 2.12 मीटर और 2.17 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद 2.21 मीटर की शानदार जंप ने पोडियम पर उनकी जगह पक्की कर दी।
4: This is Basant's second attempt at 221. Yes! Oh, the cheers that came up there. He's got a lot of supporters in the crowd.
3: टॉप तीन एथलीटों में 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर बसंत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अंतर्गत अल्जीरिया के यूनिस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये लंबी कूद में किसी भारतीय पुरुष का पहला विश्व स्तरीय पदक भी है। शाहनवाज ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे राउंड में 7.84 मीटर की जबरदस्त जंप लगाई और फिर पांचवें राउंड में 7.83 मीटर की जंप के साथ दुनिया के बेहतरीन एथलीटों के बीच अपनी जगह और पोडियम पर अपना स्थान बनाया। इटली के इंजोली ने 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक ग्रोडर ने 7.96 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने 2021 की अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन, कुल 3 पदकों की बराबरी कर ली है। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी एक दिन बाकी है और भारत के पास टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करने का सुनहरा मौका है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंड्यन ने

0: पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलोग्राम का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर देश का मान बढ़ाया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। लैंगस्टन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के निकी कालियांडा पुनाचा और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। एक रिपोर्ट।
1: पुनाचा और एस्कोबार की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने केंटकी के लेक्सिंगटन में अमरीकी जोड़ी आंद्रे इलागन और कार्ल पोलिंग को 6-7, 6-3, 11-9 से हराया। एक घंटा और 42 मिनट चले इस मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद पुनाचा और एस्कोबार ने बढ़िया तालमेल का परिचय दिया और दूसरा सेट जीतकर बराबरी हासिल की। तीसरे सेट के सुपर टाई ब्रेक में कोई भी जोड़ी 2 अंक से ज्यादा की बढ़त नहीं बना पाई और मुकाबला बराबरी पर बना रहा। हालांकि एक समय पुनाचा और एस्कोबार 7-9 के स्कोर के साथ हार के कगार पर थे। इसके बाद पुनाचा गोंजालो की जोड़ी ने लगातार 4 अंक हासिल करके मैच का पासा पलट दिया। इस दौरान उन्होंने 2 मैच पॉइंट बचाए और फिर शानदार वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुनाचा का ये 11वां एटीपी चैलेंजर डबल्स और 2026 सीजन का 5वां खिताब है। एटीपी चैलेंजर सर्किट में इस जोड़ी का ये पहला खिताब है। 31 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी पुनाचा ने जून में थाईलैंड के पुर्चे इसारो के साथ जोड़ी बनाकर ओपन सोप्रा स्टेरिया दी लियोन का खिताब जीता था। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत में साकेत मायनेनी के साथ बेंगलुरु ओपन 2 एटीपी चैलेंजर 50 और इसारो के साथ मिनोरका एटीपी चैलेंजर 100 और चेन्नई एटीपी चैलेंजर 50 भी जीतने की उपलब्धि उनके नाम है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात हॉकी की भी कर लेते हैं। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टीम ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए रोमांचक फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया।
2: फाइनल में मंदीप केर केट्टा ने दूसरे मिनट में गोल करके ओडिशा को शुरुआती बढ़त दिलाकर मध्य प्रदेश पर दबाव बनाया। आखिरकार 37वें मिनट में सोहेल अली ने मध्य प्रदेश के लिए बराबरी का गोल किया। मुकाबले के 54वें मिनट में इस टीम ने कप्तान दीपक प्रधान के जरिए फिर से बढ़त हासिल कर ली। मध्य प्रदेश ने आखिरी पलों में एक और बराबरी का गोल करने के लिए जोर लगाया। हालांकि ओडिशा ने अपनी 2-1 की बढ़त बरकरार रखी। इस जीत के साथ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा चैंपियन बन गया। वहीं तीसरे स्थान के मैच में हॉकी पंजाब ने शानदार अटैकिंग खेल दिखाते हुए हॉकी झारखंड को 6-3 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। गुरविंदर सिंह ने 11वें मिनट में गोल दागकर पंजाब को बढ़त दिला दी थी। इसके बाद टीम के कप्तान जर्मन सिंह ने 34वें और 36वें मिनट में तेजी से 2 गोल किए। चरणजीत सिंह ने 52वें और 53वें मिनट में 2 गोल दागे, जबकि अजय पाल सिंह ने 41वें मिनट में गोल करके पंजाब के गोलों की संख्या पूरी की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के हनोल से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 50वें संस्करण के अगुवाई की। ये कार्यक्रम नशा मुक्त भारत थीम और फिटनेस को हाँ कहें नशे को ना कहें संदेश पर केंद्रित था। संडे ऑन साइकिल को एक जन आंदोलन बताते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पहल एक बड़े अभियान में बदल गया है। देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर युवाओं ने साइकिलिंग के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया है।
3: संडे ऑन साइकिल की 85th एडिशन है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में 18,000 से अधिक स्थान पर युवाओं ने साइकिलिंग करके संदेश दिया है कि चलो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संदेश के साथ इस साइकिलिंग मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश के युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है ग्रामीण क्षेत्र में भी साइकिलिंग का क्रेज आगे बढ़ रहा है।
0: इस दौरान खेल मंत्री ने खेल बजट और फुटबॉल के खेल में बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की।
3: फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। ISL इस बार भी होस्ट होगी। फुटबॉल क्लब नई बन रही है। सरकार ने 36,000 करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें भी हमने एकेडमिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए निर्णय करा है। अलग अलग डिसिप्लिन की एकेडमी को प्रोत्साहित करी जाएगी और ये एकेडमी में भी विशेष करके जो रिटायर्ड एथलीट है वही एकेडमी चालू करे, क्योंकि एथलीट

0: स्वयं स्पोर्ट्स को जीता है और जो व्यक्ति स्पोर्ट्स को जीते है उसमें जज्बा होता है, इसका जज्बा को लाभ लेके हम मेडल टेली को आगे बढ़ाएंगे।
1: और अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। 135वें डोरंड कप फुटबॉल के ग्रुप ई मैच में शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कल जीत से शिलोंग लाजोंग एफसी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। एवर ब्राइटसन साना ने 2 गोल किए जबकि अभय गुरंग ट्रमेकी लामुरोंग और फिगो सिंडाई ने भी 2 गोल दागे। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत ने 3 दिवसीय अभ्यास मैच में श्रीलंका क्रिकेट एकादश को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 45 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष जुड़ गए। विशेष, कैसा रहा टीम का प्रदर्शन, टीम कितनी तैयार है मुकाबले से पहले?
2: देखिए, अगर मुकाबले की बात करें प्रशांत, तो इस मुकाबला ये जो कोलंबो के मैदान पर खेला जा रहा है वहाँ पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जहाँ उनके निशान मधुशंका और रविंदु रसंथा जैसे खिलाड़ियों ने ओपनिंग पार्टनरशिप करके ही उनको मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। 363 रन उन्होंने अपनी पहली पारी में बनाए थे
1: जी।
2: लेकिन जवाब में जब भारतीय टीम खेलने के लिए आई तो सिर्फ देवदत्त पडिकल एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया। हालांकि रविंद्र जडेजा ने उनका भरपूर साथ निभाया। तीसरी पारी में श्रीलंका सिर्फ 200 रन ही बना सकी 6 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में भारत को 207 रन चेस करने थे जो कि भारत ने बहुत ही आसानी से कर लिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाया।
1: रविंद्र जडेजा की आपने बात की, उनकी वापसी भी हो रही है और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, कैसा रहा उनका प्रदर्शन और कितने तैयार है वो आगामी श्रृंखला के लिए?
2: जी, अब जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो काफ़ी तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने का उनको मौका मिला तो उन्होंने 63 रन बनाए। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा जो है दूसरी पारी में भी उन्होंने 2 विकेट लिए, हालांकि उनको बल्लेबाजी के लिए इतना ज़्यादा मौका चौथी पारी में नहीं मिला और वो 22 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए।
1: जी, उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से इस अभ्यास मैच में प्रदर्शन किया है श्रृंखला में भी बेहतर प्रदर्शन करें।
2: जी बिल्कुल, और 15 अगस्त को भारत अपना ऐतिहासिक 600वां टेस्ट मुकाबला खेलेगा।
1: जी बिल्कुल, और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
5: जो खेलेगा वो खिलेगा।

0: एच चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
4: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह

0: में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
1: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान

0: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
3: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki.
2: India finished at the fourth spot on the medals table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines.

जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, इस दिल के टूटने की आवाज़ें जब गीत बनकर, गज़ल बनकर निकलती हैं, तो एक सदा हर उस इश्क के पास पहुंचती है जो उसका असरदार होता है। चंदन दास की गाई हुई इस गज़ल के बाद एक और गज़ल, आवाज़ चंदन दास की।

0: beyond its geographical borders, pulsing through the hearts of millions of Indians scattered across every nook and corner of the globe.
1: From the bustling tech hubs of the Silicon Valley to the historic streets of Europe and the sands of the Middle East, the global Indian diaspora stands as a living testament to the nation's enduring legacy.
0: Distance only deepens their devotion. As the tricolor hovers proudly in foreign skies, it reflects the deep-rooted love, resilience and unity that binds every overseas Indian to their motherland.
1: They're India's truest cultural ambassadors, seamlessly blending into new societies while fiercely preserving the sacred soil of their heritage in their souls.
0: No matter which part of the globe we Indians live in,
1: no matter what our age is, their collective voices join the symphony of a billion plus back home.
0: No matter where an Indian resides,
1: their heartbeat,
0: the heart of millions of overseas Indians,
1: will always echo the sacred rhythm of Jai Hind.
2: In the National Program features, you just heard the feature Echoes of Independence with Indians Around the Globe. Narration, Vaibhav Jyotsna Srivastav and Vidushi Watts. Script and production, Nitish Arora. A production of Akashvani Delhi for Central English Features Unit. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अखिल भारतीय रवि बासरीय संगीत सभा हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: टुडेज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि बासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसिटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
5: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
4: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता, फॉलोड बाई अडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णु भट्ल कृष्णवेणी of the renowned Vishnu Bhatla sisters, and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6, she was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदिताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू कंडचापुताल।

इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वन्यांकन किया गया है।

0: कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। शी वॉज अकंपनीड ऑन वायोलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कंसर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा एंड ब्रॉट टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी के कॉर्नर सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11 बजे हैं। आप हम सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। घर घर

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नज़र डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज़्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने

प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा

0: government has extended the tenure of Director of Enforcement Directorate Rahul Naveen by 1 year from 13th of this month to 13th of August next year. The extension in service will continue beyond his scheduled retirement on the 31st of July 2027. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।